0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: दस बजकर 53 मिनट का समय, प्रोग्राम सुपरहिट सॉन्ग का ये अंतिम गीत, और इसी अंतिम गीत के साथ अब सुपरहिट सॉन्ग से अपने दोस्त रतन को दीजिए जाने की अनुमति। आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, मिलते हैं न्यूज ब्रेक के बाद आपके अपने प्यारे से शो संदेश आपके गीत हमारे पर, बस यही कहां आपके अपने प्यारे चैनल 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

नमस्कार, प्रातः के 11 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षा का वह दीप है जो ज्ञान का प्रकाश फैलाकर आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी ज्ञान के विस्तार और प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में आगामी 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाएंगे। प्रदेशवासियों के नाम आज अपनी पाती में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार परंपरागत ज्ञान को आधुनिक विज्ञान, तकनीक, नवाचार और कौशल से जोड़ रही है। लखनऊ में AICT और कानपुर में ड्रोन एवं UAV तकनीक का विकसित होता पारिस्थितिकी तंत्र उत्तर प्रदेश के तकनीकी भविष्य की नई संभावनाओं का आधार बन रहा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आइए इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर संकल्प लें कि हर बच्चा विद्यालय पहुंचे, हर विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाए, हर युवा कौशल और नवाचार से जुड़े तथा हर नागरिक साक्षर होने के साथ डिजिटल ज्ञान और AI के प्रति जागरूक बने। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक एवं विशेष शिक्षकों CWSN के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा स्पेशल TET का विज्ञापन जारी कर दिया है। पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट apply.upesc.org के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है। परीक्षा 3 नवंबर को होगी। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस ने चंदौली में 1 किलो 20 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आकी गई है। PDDU नगर के पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ANTF वाराणसी इकाई और अलीनगर पुलिस की टीम ने गोदना मोड़ के पास चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया। रेलवे बोर्ड ने 2 ट्रेनों का अमरोहा रेलवे स्टेशन पर ठहराव स्वीकृत किया है। इनमें अयोध्या कैंट

से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली ट्रेन और आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरनगर जंक्शन के बीच चलने वाली त्यौहार स्पेशल ट्रेन शामिल है। अयोध्या कैंट आनंद विहार ट्रेन का संचालन 2 अक्टूबर से सोमवार और शुक्रवार को होगा। वहीं आनंद विहार मुजफ्फरनगर त्यौहार स्पेशल ट्रेन 3 अक्टूबर से 24 नवंबर तक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: सूचनाएं, दृश्य और घटनाएं तो इंसान भूल जाता है, मगर वो ये बात कभी नहीं भूलता कि आपने उसे कैसा महसूस कराया है।
1: FM रेनबो ने अपने सुनने वालों को कुछ ऐसा ही एहसास दिया है जिसे धूमिल कर पाना नामुमकिन है।
0: बदलते वक्त के साथ रेडियो भी बदला, मगर नहीं बदले तो वो एहसास,
1: जैसे बरसात की किसी भीगी रात में FM रेनबो पर बज रहे संगीत को सीने से लगाए सितारों को निहारती किसी युवती के मन के भाव, जो बेहद कीमती है।
0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और 11:04 का ये प्यारा सा समय, और इस प्यारे से समय में शुरू हो चुका है आपका अपना प्यारा सा शो संदेश, आपके गीत हमारे। और हाँ, इस शो में आपके संदेश बहुत मायने रखते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे संदेशों के साथ आप हमारे साथ जुड़िए। और जुड़ने का माध्यम दो हैं, हमारी फ़ोन कॉल, हमारे फ़ोन नंबर और हमारी मेल आईडी। हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं रतन आपका इंतज़ार कर रहा हूं माइक के इस तरफ। और हमारे जो दो मैजिकल नंबर्स हैं वो हैं 0522-2238-852, दूसरा नंबर है 0522-2238-845। तो इन दो नंबर्स के माध्यम से आप हमारे साथ आज अपने इस प्यारे से शो संदेश आपके गीत हमारे में जुड़ सकते हैं और अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। हमें आपकी मेल्स और कॉल्स का इंतजार है। आप हमारे साथ यूं जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

0: और दोस्तों हमारे साथ कोई फोन कॉल पर जुड़ चुका है, चलिए करते हैं उनसे बात, देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, हेलो,
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रही हैं?
1: गुड मॉर्निंग सर, मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ गोंडा से।
0: क्या बात है अनु, वेलकम आपका, और कैसी हैं आप पहले ये बताइए।
1: सर मैं बहुत अच्छी हूँ, और अभी आपसे बात करके और भी ज्यादा अच्छी हो गई, बस आप बताइए आप कैसे हो।
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बातें करके और भी ज्यादा मुझे अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। तो ये बताइए FM रेनबो आप कितना सुनती हैं? अच्छा, आपकी मतलब बहुत लोगों से, हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे भी बातचीत होती रहती है।
1: हाँ।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे,
1: बहुत बड़े एक गाने के हम लोग आपस में जुड़ गए।
0: क्या बात है, यानी FM रेनबो एक बहुत ही अच्छा सा माध्यम बन गया आपकी दोस्ती का। चलिए बहुत अच्छी बात। आप ये बताइए आज क्या संदेश देना चाहती हैं?
1: सर आज मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि हमको ना जैसे मतलब पॉलीथीन कम से कम यूज करना चाहिए, जैसे मार्केट जा रहे कहीं भी कुछ लेने के लिए जा रहे तो हम घर से थैला लेकर जाए, उसमें कोई शर्म नहीं करें कि अरे हम थैला लेकर जा रहे हैं, ऐसा कुछ ना करें। और इससे क्या होगा सर, मतलब कि पॉलीथीन जो पैकिंग आता है उसको तो हमको लेना ही पड़ेगा, लेकिन जो हम सामान लेने जाते हैं मार्केट में और बहुत पॉलीथीन में लेते हैं वो नहीं लेंगे, तो उससे काफी कम होगा तो काफी बेहतर होगा।
0: जी हाँ दोस्तों, एक बिल्कुल बहुत अच्छी बात अनु आपने कही, क्योंकि एक छोटी सी पहल बहुत बड़ा रूप कब ले ले पता ही नहीं चलता।
1: हाँ।
0: और शुरुआत तो हमें अपने आप से ही करनी होगी ना।
1: क्या बात, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं खुद का बनाया हुआ थैला ही लेकर जाती हूँ।

0: जी
1: और मैं वहाँ अगर मार्केट में कोई देता भी दुकान वाले भैया देते भी है तो मैं मना कर देती हूँ, मैं कहती हूँ भैया मुझको पॉलिसी ना करती।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी सी बात आपने अनूप हम तक पहुंचाई, हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा।
1: ओके सर,
0: थैंक यू। तो दोस्तों अनु ने तो अपनी बात हम तक पहुंचा दी है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो।
2: हाँ हेलो सर
0: जी, नमस्कार, कौन बात कर रही हैं?
2: जी संगीता बोल रहे हैं सर।
0: संगीता जी स्वागत है आपका FM रेनबो पर, कैसी हैं आप?
2: बढ़िया हैं सर।
0: क्या करती हैं संगीता जी?
2: जी हाउसवाइफ हूँ।
0: क्या बात है, हाउसवाइफ हैं। तो इस वक्त आप फ्री हो गई अपने सारे कामकाज से या फिर अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं आज के?
2: नहीं कुछ काम बाकी है अभी।
0: अच्छा, अभी कुछ काम बाकी है। हमको लगता है हाउसवाइफ के काम कभी समाप्त ही नहीं होते, है ना? बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, और ऐसी स्थिति में होता ही है कि अक्सर जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है?
2: जी दिन भर सारा समय जो काम करते बीत जाता है, ये करना तो भी।
0: तो इतने बिजी अपने इतने बिजी कार्यक्रम के बीच में आप FM रेनबो किस तरह से सुनती हैं?
2: हर वक्त चलता ही रहता और काम करते रहते हैं।
0: अच्छा, यानी कि आपकी मॉर्निंग भी FM रेनबो से होती है और आपकी जो नाइट होती है वो भी FM रेनबो के साथ ही होती है।
2: जी,
0: क्या बात है। कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आता है, बताइए?
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ।
0: क्या बात है, रोज सुनती हैं? जी तो आज क्या बात, तो आज क्या संदेश देना चाहती हैं संगीता जी?
2: सबसे पहले तो कहना चाहूंगी आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने आप बजा रहे थे।
0: थैंक यू।
2: सानू की आवाज में बहुत अच्छा लगा, सारे गाने बहुत एक से बढ़ के एक थे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बताइए।
2: और मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या गुटखा पान मसाला खाते हैं सार्वजनिक जगह पे, इस तरह जो है ना करें, क्योंकि खुद तो अपना नुकसान करते हैं, साथ में जो सामने वाला जो कुछ खाता पीता नहीं है, साथ में बच्चे भी होते हैं, तो अपना ना सही लेकिन सामने वाले का तो ख्याल रखें। इस तरह सामने जो है सिगरेट पीते रहते, बीड़ी पीते, धुआं उड़ाते रहते, वो ये नहीं सोचते हैं कि हम अपना तो कर ही रहे लेकिन जो हमारे सामने पता नहीं उसको पसंद है या नहीं, इस तरह धुआं उड़ाते हैं, वो ये चीज नहीं करनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही और वाकई में ये बहुत गंभीर भी बात है और हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करता है तो अगर वो कर रहा है तो स्वयं तो नुकसान अपने लिए कर ही रहा है, साथ में आसपास जो लोग होते हैं या फिर बच्चे या बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है।
2: बहुत ज्यादा, और मजबूरी में अगर हम कहीं सफर कर रहे हैं, सफर पे है या हॉस्पिटल है या बस अड्डे या कहीं पर भी है, रेलवे स्टेशन में, तो मजबूरी में हमको ऐसे लोगों के साथ जो रहना पड़ता है।
0: अच्छा, आपको एक चीज पता है कि अगर कोई हमारे सामने सार्वजनिक स्थान पर अगर धूम्रपान कर रहा है तो हम उसे तुरंत मना कर सकते हैं और उसकी शिकायत भी कर सकते हैं?
2: जी शिकायत तो नहीं मालूम है लेकिन कह सकते हैं, लेकिन कहने से लोग मानते नहीं और लड़ने को तैयार हो जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए और अगर शायद हमारे मना करने से अगर कोई मान जाता है तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है।
2: तो है लेकिन आज के टाइम पे बहुत कम लोग ऐसे होंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात आपने कही और आज का ये संदेश आपका भी बहुत अच्छा हमारे लिसनर्स तक पहुंचा, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका, और आज आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा संगीता जी।
2: जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: मुझे भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों संगीता जी बंगला बाजार से हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने अपने दिल की बात अपने संदेश के साथ हम तक पहुंचाई, उन्हें हमारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल्स के जो भी गीत उस पर बजाए जाते हैं वो उन्हें बहुत पसंद आते हैं, दिन भर वो सुनती हैं, एज अ हाउसवाइफ वो हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ FM रेनबो भी पूरी तरह से इंजॉय करती हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो संगीता जी के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग इस वक्त लाइन पर जुड़े हुए होंगे, लगातार ट्राई कर रहे होंगे, हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आप हमारी मेल आईडी के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, fmakashwanilakhnow@gmail.com, और हमारे दो मैजिकल नंबर्स हैं उनके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर्स हैं हमारे 0522223882 और दूसरा नंबर है 0522223845, इन दो नंबर्स के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए और आज के अपने इस प्यारे से शो संदेश आपके गीत हमारे में अपने प्यारे से संदेश हम तक पहुंचाइए। फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक प्यारा सा गीत और उसके बाद होंगी कुछ और बातें।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम।

0: RHL गोल्ड टीम टिसरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

उदारा मितौली लखीमपुर खीरी से इनकी मेल हम तक पहुंची है। सुपर हिट सॉन्ग प्रोग्राम इन्हें बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच अशोक जी। और ये कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में बच्चों को गड्ढों से दूर रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गंदा पानी जमा होने से मलेरिया, डेंगू और डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही पानी से भरे गड्ढों की गहराई का अंदाज़ा न होने के कारण फिसलने, चोट लगने या फिर डूबने जैसी गंभीर घटनाएं भी हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात अशोक जी आपने कही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वाकई में हमें इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मेल के लिए। अनिल कुमार साहब की मेल हमारे पास पहुंची है और ये उत्तराखंड में हमें इस वक्त सुन रहे हैं और इनका संदेश यह है कि रतन सर, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है भाई की तरह, 26 पड़ोसी देश है भाई की तरह, ओके। 26 अगस्त को यहाँ बाढ़ आई थी, नेपाल में बहुत से लोग बेघर हो गए हैं, सब कुछ पानी में बह गया है, उनकी मदद करनी चाहिए, कुछ पैसे डोनेट कर सकते हैं, नेपाल देश को इससे उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैंने भी कुछ पैसे डोनेट किए हैं। अनिल जी बहुत अच्छी बात है और किसी की समस्या में अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं, अगर अपनी सीमा के अनुरूप हम उनकी मदद मैक्सिमम जितनी कर सकते हैं हमें ज़रूर करनी चाहिए और ऐसा हम सबको ज़रूर एक बार सोचना चाहिए। बहुत अच्छा ये संदेश है आपका और उन सब के लिए जो मदद करना चाहते हैं ज़रूर आगे बढ़कर आएं और नेपाल वासियों की मदद ज़रूर ज़रूर करें। हमारे पास अगली मेल है महेंद्र दीपन साहब की और इन्होंने प्यारा सा नमस्कार भेजा है। आपको भी बहुत प्यारा सा नमस्कार महेंद्र जी। मैं महेंद्र देपन गांव रूण जिला नागौर राजस्थान से ये हमें सुन रहे हैं। आज का कार्यक्रम सुनते हुए एक छोटी सी बात सभी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ। क्या बात है वो? काम कितना भी ज़रूरी हो, अपने स्वास्थ्य और अपनों के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। समय पर भोजन, पर्याप्त पानी, पूरी नींद और रोज़ कुछ पल परिवार के साथ बिताना भी जीवन की ज़रूरी जिम्मेदारियां हैं। मेरी ओर से सभी श्रोताओं को स्वस्थ, सुख और सुरक्षित रहने की शुभकामनाएं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और आपका ये संदेश हम तक पहुँचा, हमारे लिसनर्स तक पहुंचा, बहुत अच्छी सी बात। दोबारा को मेल ज़रूर कीजिएगा महेंद्र जी, आपके संदेश वाकई में बहुत अच्छे होते हैं और हमारे लिसनर्स भी बहुत ही ध्यान से इन संदेशों को सुनते भी हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और वाकई में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अक्सर अपने काम काज के कारण भूल जाया करते हैं, लेकिन आपके संदेश जब पहुँचते हैं ना तो उनमें बहुत सारी बातें हमें रिकॉल हो जाती हैं और हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि हाँ, हमें तो ये भी करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ संदेश आपका है आज हमारे इस प्यारे से शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। गुलफ्ता सिद्दीकी की भी मेल हम तक पहुंची है और इन्होंने गुड मॉर्निंग के साथ लिखा है कि मैं गुलफ्ता सिद्दीकी संडीला से। क्या बात है गुलफ्ता जी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपको हम सब सुन रहे हैं। बिल्कुल हमेशा इसी प्यार के साथ सुनती रहिए, हम बस यही आपसे प्रॉमिस चाहते हैं। आपने पिछला प्रोग्राम इतना बेहतरीन किया, हम सबको मज़ा आ गया। क्या बात है, हमें भी प्रोग्राम करके बहुत मज़ा आया, पिछला वाला भी और ये वाला तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा करने में, क्योंकि आपकी इतनी वेरी वेरी मेल्स हम तक पहुंच रही हैं। फिर क्या बोलते हैं, हेलो सर बोल दूँ वहीं जो आप लोगों ने गुड मॉर्निंग लखनऊ में बताया था। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है अगर आप हमारे संदेश सुनती हैं, हमारे पॉजिटिव थॉट्स को सुनती हैं और उस पर कही गई बातों को सुनती हैं और उन्हें फॉलो करती हैं, तो वाकई में बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर बोल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गुलफ्ता हमें मेल करने के लिए। बाबू अंसारी साहब की भी मेल हम तक पहुँच गई है, अहमदपुर बाज़ार बाराबंकी से। गुड मॉर्निंग रतन सर, कैसे हैं आप? तो मैं बहुत अच्छा हूँ बाबूजी और आशा करता हूँ आप भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। प्रकृति हमारी ज़िंदगी का आधार है, ये इनका संदेश है। पेड़ पौधे, पानी, हवा और मिट्टी की हिफाजत करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे बड़ी सौगात है। इसलिए प्रकृति को बचाने के लिए आज से एक छोटा सा कदम ज़रूर उठाएँ, एक पेड़ लगाएँ, पानी बचाएं और आसपास सफाई रखें। बहुत जिम्मेदारी वाली ये बात और वाकई में हम सबको अपने इस बिजी कामकाज के जीवन से, इस बिजी माहौल से ज़रूर अपने

जी दोस्तों, 11:22 का समय, प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त रतन अशोक कुमार साहब। की मेल हम तक पहुंची है, कह रहे हैं नमस्कार, आपको भी नमस्कार राय।

समाज के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना चाहिए, ताकि हम अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका जो भविष्य है वो सुधार सकें, उनको कुछ अच्छा दे के जा सकें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और जब तक हम अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तब तक शायद हम कुछ अच्छा नहीं दे सकते अपनी आने वाली पीढ़ियों को। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी इतनी अच्छी बात हम तक पहुँचाने के लिए। तो इतनी सारी मेल्स के बाद अब समय है कि एक प्यारा सा गीत भी आप तक पहुंचा ही दें, और उसके बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बातें भी होंगी आपके अपने प्यारे से शो संदेश आपके गीत हमारे, जिसे आप सुन रहे हैं अपने आप आपके अपने प्यारे से चैनल 100.7 FM रेनबो पर, जो है आपका सुरों का लखनवी एहसास।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
6: 11:32 का समय, प्रोग्राम संदेश आपके, गीत हमारे, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात, और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुनो का लक्ष्य।

0: यस सर। और हमारे साथ देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद साकिब बात कर रहे हैं सर।
0: मोहम्मद साकिब कहाँ से बात कर रहे हैं? थोड़ा तेज बोलिए साकिब, खाना नहीं खाया क्या आज?
1: लखनऊ से बात कर रहे हैं।
0: लखनऊ से? अच्छा, लखनऊ से कहाँ से?
1: बग्गा से।
0: क्या बात। तो ये बताइए एफएम रेनबो कितना सुनते हैं आप?
1: टाइम मिलता है जब सुनते हैं, काम ही होता है।
0: क्या करते हैं आप?
1: रेडीमेड बाउंड्री का काम करते हैं।
0: किसका?
1: रेडीमेड बाउंड्री नहीं हो?
0: रेडीमेड
1: बाउंड्री, बाउंड्री जो होती है।
0: हाँ हाँ,
1: बाउंड्री वॉल का काम।
0: ओके ओके ओके ओके, क्या बात है। तो इससे काम के बीच में आपको टाइम मिल जाता है?
1: हाँ मिल जाता है, 4-5-4 घंटे काम होता है, उसके बाद टाइम मिल जाता है।
0: क्या बात है। तो सबसे अच्छा शो कौन सा लगता है आपको?
1: सारे शो अच्छे आपकी तरफ से आ रहे हैं।
0: क्या बात है, सभी पसंद आ रहे हैं आपको?
1: जी सर।
0: क्या बात है, हमें ऐसे ही लिसनर्स चाहिए जिनको सब कुछ पसंद आता हो। तो ये बताइए आज क्या संदेश देना चाहते हैं साकिब?
1: संदेश मेरा ये है सर, हाँ? जो है ना इत्तेकन बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है। कुछ लोगों हमने देखा कि जाके मेडिकल, सर में दर्द हुई या थोड़ा सा फीवर हुआ तो मेडिकल से दवा ले आते हैं, जाके
0: मेडिकल स्टोर से।
1: जी सर, ये गुजारिश है कि प्लीज डॉक्टर के पास जरूर जाइए, मेडिकल से दवा ऐसे ना ले बिना डॉक्टर की सलाह से।
0: स्वयं का डॉक्टर बनने से अच्छा है आप अगर कोई भी समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, उसके बाद ही कोई दवा ग्रहण करें, है ना?
1: हाँ, उसे दिखा के ही दवा लेना चाहिए, मेडिकल वाले वो तो अपने हिसाब से दवा देगा ना, उसको इतनी नॉलेज है तो डॉक्टर बनना नहीं बैठा होता वो।
0: बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कही है और कहीं ना कहीं बहुत ये गंभीर भी बात है, क्योंकि अक्सर हमने भी ये चीज देखी है, बहुत सारे लोग, हाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी भी समस्या होती तुरंत मेडिकल स्टोर पे गए और अपनी बस जो भी प्रॉब्लम हुई वो बोला, मेडिकल स्टोर वाले ने दवा दे दी, वो खा लिया बस। अब इसका क्या रिजल्ट होगा, हाँ इसका क्या रिजल्ट होगा वो उनको भी नहीं पता होता है। तो बहुत अच्छी बात आपने साकिब बताई और वाकई में ये संदेश हमारे लिसनर्स तक पहुंचा और हमारे सभी लिसनर्स जरूर इस बात को फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो दोस्तों साकिब ने तो अपनी बात हम तक पहुंचा दी है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रही है? फिर से अपना नाम बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। एक बार आप अपना फिर से बताइए।
2: आशा बोल रही हूं, लखीमपुर खीरी।
0: ओके आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपकी आवाज जितनी धीमी है लेकिन सुरीली बहुत है। क्या करती हैं आशा जी? घर पे ही रहती हैं। काम क्या करती हैं घर पे रह के? घर का काम करती हैं। क्या बात है, तो आपको खाना बनाना आता है? क्या बात है, मतलब ऐसे लोग मिलना बड़ा मुश्किल होता है जिन्हें सब कुछ आता हो। तो एफएम रेनबो कितना सुनती हैं आशा?
2: बहुत सुनती
0: हैं। अच्छा, तो कौन सा प्रोग्राम है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है? पॉप टाइम। क्या बात है, यानी आप पॉप टाइम को कभी भी मिस नहीं करती हैं। बहुत अच्छी बात है, हमेशा इसी तरह सुनती रहिए और हमारे साथ इसी तरह जुड़ी रहिए। आज क्या संदेश देना चाहती हैं बताइए। क्या बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, अपने से बड़ों का सम्मान हमें जरूर करना चाहिए। बात छोटी सी है लेकिन बहुत ज्यादा गहरी है। तो आशा जी बहुत बहुत जी
2: सर, आपकी वॉइस बहुत अच्छी।
0: क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमारी आवाज़ अच्छी लगी और हमें भी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। जितना आप धीरे से बोलती हैं अपने इस रिदम को हमेशा इसी तरह बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो दोस्तों आशा जी ने तो अपनी बात हम तक पहुंचा दी और उन्होंने कहा ये कि अगर आपके अपने बड़े हैं तो उनका सम्मान हमें ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। बहुत अच्छा सा ये संदेश उनका हम तक पहुंचा है। और भी हमारे पास कॉलर्स हैं और भी बहुत सारी हमारे पास मेल्स हैं, उनको भी ज़रूर ज़रूर हम शामिल करेंगे, लेकिन इतनी सारी बातों के बाद एक छोटा सा गीत तो ज़रूर बनता है। तो इस गीत को हमारे साथ एंजॉय कीजिए, हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

0: आप सुन रहे हैं FM रेनबो लखनऊ 100.7 सुरों का लखनवी एहसास।
1: जी हाँ दोस्तों, 11:40 का समय और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, लगता है वो कॉल काटकर चले गए। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: बाराबंकी से रिंकू शास्त्री बोल रहे हैं।
1: रिंकू शास्त्री जी, स्वागत है आपका FM रेनबो पर।
2: धन्यवाद।
1: कैसा लग रहा है आपको FM रेनबो पर बात करके?
2: बहुत बढ़िया लग रहा है मैं सर
1: जी।
2: बात कर चुके हैं पहले भी।
1: अच्छा,
2: 10 बार बात कर चुके हैं।
1: यानी आप हमारे पुराने कॉलर हैं?
2: नहीं, पुराने नहीं है।
1: हाँ, नए।
2: 25 मई से जुड़े थे।
1: कब से जुड़े?
2: 25 मई
1: 2026 से। अच्छा, तब भी कुछ महीने तो पुराने हो गए ना।
2: पुराने तो हैं सर, 25 मई को पहली बार बात हुई थी सर्वे सर्विस 7 बजे से।
1: क्या बात है, तो तब से लेकर अब तक कई बार बातें हो चुकी हैं, है ना?
2: हाँ, इस प्रोग्राम में तो छठी बार फोन लगा है।
1: क्या बात है, बहुत लकी हैं आप। तो ये बताइए, क्या करते हैं आप?
2: हम तो कथावाचक।
1: कथावाचक। क्या करते हैं?
2: कथावाचक
1: हैं आप। क्या बात है, बहुत अच्छी। आप कथा भी कहते होंगे और आपकी आवाज से भी लग रहा है। तो आज क्या संदेश देना चाहते हैं रिंकू जी?
2: संदेश सर जी तो बहुत है दुनिया में, ऐसा कोई संदेश है ना, जब भी बात कह दे तो संदेश हो जाए।
1: क्या बात है, तो आज क्या खास बात कहना चाहते हैं बताइए।
2: संदेश सर जी ये भी है, लोग ट्रेन कैसे फटका बंद होता है तो लोग उसमें फंदा के गाड़ी निकालने लगते है। बंद हो तो फंदा कर गाड़ी नहीं निकालना चाहिए।
1: अच्छा, ट्रेन वाली आप बात कर रहे हैं, जो ट्रेन का जब वो बंद हो जाता है तो सिग्नल
2: जल्दी में होते ना। हाँ, जब तक गाड़ी आएगी तो ट्रेन कर जाएंगी।
1: अक्सर मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं जिसे बंद किया गया होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात
2: है। ट्रेन में फंस गए तो चले जी हो।
1: बिल्कुल, बहुत सही।

0: बात आपने कही और बहुत गंभीर ये बात है, और अक्सर बहुत सारे हादसे ऐसे हो जाते हैं।
1: होते हैं, न्यूज पर आप तो पढ़ते लिखते हैं, बराबर देखते सुनते हैं, हर जगह यही होता
0: जी,
1: है।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: तो मैं इस बात को लेकर बहुत यंत्रणाएं देता हूं कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपका ये संदेश हमारे सभी लिसनर्स तक पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो दोस्तों, रिंकू शास्त्री जी जो कि कथावाचक हैं, उन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचा दी है, और बहुत गंभीर विषय पर उन्होंने अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। और वाकई में बहुत सारे ऐसे हादसे हो जाते हैं, अक्सर लोग अपने परिवारिक जनों को खो देते हैं एक छोटी सी गलती के कारण, और ऐसा अक्सर लोग समय को बचाने के लिए करते हैं कि हम जल्दी पहुँच जाएँगे या फिर हम जल्दी तुरंत निकल जाएँ तो शायद हम पहुँच जाएँगे, लेकिन होता नहीं है। बस कुछ पलों की गलती आपको जीवन से बहुत बड़ा नुकसान आपको दे सकती है। इसलिए इन सब बातों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। हमारे साथ इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए। हमारे पास लगातार मेल्स भी आ रही हैं। ब्रजेश सिंह साहब की भी मेल आई है, और इनका संदेश ये है कि बाइक चलाते समय फ़ोन का उपयोग ना करें, ज़िंदगी बहुत कीमती है, खुद का भी ध्यान रखें, सामने वाले का भी। सुपरहिट सॉन्ग इन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसरगंज बहराइच से इनकी मेल हम तक पहुंची है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं और हर प्रोग्राम में लगभग इनकी मेल हम तक ज़रूर पहुंचती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में ये बात जो संदेश आपके हम तक पहुंचते हैं वो लगते तो बहुत कॉमन से हैं, लेकिन वो बहुत गंभीर भी होते हैं। अगर इन सब संदेशों को बहुत ध्यान से सुना जाए, उनको फॉलो किया जाए, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। कॉमन लगने वाली चीज़ें कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें बता जाती हैं, सिखा जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपकी इस प्यारे से संदेश के लिए। एक और बहुत ही प्यारा सा ट्रैक हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, इसे एंजॉय कीजिए, और उसके बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बातें कुछ और कॉल्स के साथ। आप अपने प्यारे से शो संदेश आपके गीत हमारे के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: तो आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो,
6: शुरू का लखनवी एहसास।
7: ग्यारह बजकर 51 मिनट का समय और प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे और आपका हमारा ये प्यारा सा साथ, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो
8: जी, नमस्कार सर।
7: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
8: सर अनिल कुमार बोल रहा हूँ, नेटा खाली नंबर 1।
7: अनिल जी, आपका तो मैसेज भी बहुत आते हैं हमारे पास।
8: जी सर, मैं रेगुलर सुनता हूँ आपके रेडियो, जब से ये रिले टास्क हमारे यहाँ गजानिया में 3.7 का, तो सर ये उत्तराखंड तो बहुत साफ आता सर रेडियो।
7: तो ये बताइए क्या करते हैं आप?
8: सर मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में PLD की जॉब करता हूँ।
7: अच्छा, तो इस जॉब के बीच में आपको सुनने का टाइम मिल जाता है FM रेनबो? अनिल जी आवाज आ रही?
8: हाँ हेलो,
7: मैं ये कह रहा हूँ आपको अपने इस बिजी कामकाज के बीच में आपको टाइम मिल जाता है रेडियो सुनने का?
8: जी बिल्कुल बिल्कुल सर, रेडियो घर पे होते हैं तो रेडियो पे सुनते हैं, और जब कहीं बाहर जाते हैं तो मोबाइल ऐप से सुनते हैं, वे ओटी ओटी की।
7: अच्छा क्या बात, मतलब रेडियो जरूर सुनते हैं और FM रेनबो जरूर।

0: सुनते हैं, है ना
1: जी सर।
0: तो आज क्या संदेश देना चाहते हैं अनिल जी?
1: सर मेरा आज का संदेश है सर, मैंने भी मेल में भी कहा था वो, जैसे अभी नेपाल में सर 28 आया था, वहाँ पे सर बहुत से लोग जो है बेघर हो गए हैं और बाढ़ में उनका सब कुछ बह गया है, जन हानि और एनिमल्स की हानि, हर चीज की हानि हुई है सर।
0: बिल्कुल हुई है।
1: सर अगर हम थोड़ा बहुत डोनेट करें वहाँ पे कुछ पैसे या कुछ फूड सामग्री या कुछ कपड़े वगैरह डोनेट करें तो सर उनकी वहाँ पे बहुत हेल्प हो जाएगी सर।
0: बिल्कुल, और आपका ये संदेश हमने पहुँचा भी दिया है।

0: सर अगर हम थोड़ा बहुत डोनेट करें वहाँ पे कुछ पैसे या कुछ फूड सामग्री या कुछ कपड़े वगैरह डोनेट करें तो सर उनकी वहाँ पे बहुत हेल्प हो जाएगी सर।
1: बिल्कुल, और आपका ये संदेश हमने पहुंचा भी दिया है। अनिल जी, आपने हमें कॉल किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा।
0: धन्यवाद सर,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनिल जी ने अपनी बात हम तक पहुंचा दी, उनका संदेश भी हम तक पहुंचा था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, नमस्ते, कौन बात कर रही है?
2: रिंकी, रिंकी दीवानों के शहर रायबरेली से।
1: रिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर।
2: थैंक यू सर, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
2: सर आज आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, एकदम जबरदस्त और झक्का हुआ।
1: देखिए, जबरदस्त झकाओ तो आप लोग उसे बना देते हैं। हमारी बस कोशिश ये रहती है कि जो भी है यहाँ से प्ले किए जाए सॉन्ग्स, वो आपको पसंद आए। और अगर आपको पसंद आए,
2: सच में इतने अच्छे बजाए, इतने अच्छे गाने बजाए सर, मन कर रहा आपको इनाम दे दूं।
1: हमारा इनाम हमें मिल गया है, आपसे हमारी बात हो रही है, इससे बड़ा और क्या इनाम हो सकता है हमारे लिए।
2: बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और सर आप कार्यक्रम में आते ना फोनिंग वाले में, तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती, क्योंकि सभी श्रोताओं से आप इतने अच्छे, इतने प्यार से बात करते ना, बहुत सुनने में अच्छा लगता है।
1: क्या बात है, आपको भी, आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज क्या संदेश देना चाहते हैं, जल्दी से बताइए क्योंकि टाइम बहुत तेज भाग रहा है।
2: जी सर, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सर किसी भी व्यक्ति को किसी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर अहंकार इंसान को बहुत ही घमंडी और एटीट्यूड वाला बना देता है। तो जितने भी श्रोता, जितने भी अनाउंसर सुन रहे हैं, सबके लिए हमारा मैसेज है।
1: चलिए, आपकी बात सब तक पहुंच चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो रिंकी पिंकी ने हमें कॉल किया और उन्होंने अपना संदेश भी हम तक पहुंचा दिया है। और 11:54 का समय हो चुका है और ये समय इशारा करने लगा है कि संदेश, आपके गीत हमारे इस प्रोग्राम को अब हम यहीं पर वाइंड अप करें, क्योंकि जब तक इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप नहीं करेंगे तब तक अगले प्रोग्राम में अगले एंकर से आपकी मुलाकात कैसे होगी। तो बस इसी के साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचेगा। फिलहाल आज के लिए अपने इस प्यारे से शो से, यानी कि संदेश आपके गीत हमारे से, अपने दोस्त रतन को दीजिए जाने की अनुमति। आपका ये दिन बहुत शुभ हो, बहुत प्यारा हो और खुशनुमा हो। बस इन्हीं दुआओं के साथ अब मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं किसी और दिन, किसी और प्रोग्राम में। तब तक आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
3: हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल और कृत्रिम मेधा AI साक्षरता पर जोर देते हुए कहा कि AI और डीप टेक जैसी नए जमाने की प्रौद्योगिकियां शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, उद्योग तथा रोजगार के क्षेत्र में नए मौके पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर योगी की पाती शीर्षक की गई एक पोस्ट में कहा कि शिक्षा सिर्फ बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें ज्ञान, संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और ऐसी समझ भी देनी चाहिए जो उनके जीवन को सही दिशा दे सके। मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकियों को अपनाने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि लखनऊ में AI सिटी और कानपुर में ड्रोन एवं UV तकनीक का विकसित होता पारिस्थितिकी तंत्र उत्तर प्रदेश के भविष्य की नई संभावनाओं का आधार बन रहा है। देश में वाहन खुदरा बिक्री अगस्त में 17.51% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि यह वृद्धि मॉनसून की वजह से आई मौसमी सुस्ती और त्योहारों के देर से शुरू होने के बावजूद GST 2.0 से बनी तेजी के कारण हुई। भारत में पहली बार यात्री वाहनों की बिक्री में वैकल्पिक ईंधन CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक की हिस्सेदारी 41.95% हो गई, जो पेट्रोल की 40.85% हिस्सेदारी से अधिक है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सुबह नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में दही इमारत स्थल का दौरा किया। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि मलबे का लगभग 80% हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि मलबे से 12 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई तथा 6 लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार प्रभावित विद्यार्थियों के अभिभावकों के संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के माल

की अनदेखी के कारण यह दुखद घटना हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भवन के मालिक की विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने दो ट्रेनों का अमरोहा रेलवे स्टेशन पर ठहराव स्वीकृत किया। इनमें अयोध्या कैंट से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली ट्रेन और आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरनगर जंक्शन के बीच चलने वाली त्योहार स्पेशल ट्रेन शामिल है। अयोध्या कैंट आनंद विहार ट्रेन का संचालन 2 अक्टूबर से सोमवार और शुक्रवार को होगा। वहीं आनंद विहार मुजफ्फरपुर त्योहार स्पेशल ट्रेन 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

जी 12:10 हो चुके हैं दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। शुरू हो चुका है हमारी प्यारी फीमेल लिसनर्स को डेडिकेटेड ये प्यारा सा शो शतरूपा, और मैं हूँ आपकी दोस्त हर्षा। और दोस्तों आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं एक बहुत ही खास चीज पर। जानते हैं क्या? न्यूट्रिशन। यस, आज हम लोग न्यूट्रिशन पे बात करने वाले हैं बिकॉज न्यूट्रिशन वीक का आज लास्ट डे है, तो इसलिए न्यूट्रिशन, डाइट और हेल्थ पर आज हम लोग बहुत ढेर सारी बातें करने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आज हम एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन डॉक्टर मनीषा कालका जी से भी इस विषय पर जानकारी लेंगे। तो बस मेरे साथ बने रहिए, प्यारे प्यारे मीठे मीठे गानों के साथ हम लोग एंजॉय करने वाले हैं इस शो को। और अब बातें तो मैंने कर ली हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको पता ही है रूल क्या है, पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना और उसके बाद ये सिलसिला शुरू करते हैं।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: जी 12:17 हो रहे हैं दोस्तों, इतने प्यारे से गाने के बाद वेलकम बैक। आज बात होने वाली है न्यूट्रिशन की, आपके स्वास्थ्य की, और आप सुन रहे हैं शतरूपा ऑन 100.7 FM रेनबो मेरे यानी हर्षा के साथ। तो अगर हम न्यूट्रिशन

की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है जो सबसे बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है उसे हमें टैकल कर लेना चाहिए, और वो है आपकी प्लेट। आपके खाने की प्लेट में एक न्यूट्रिशनल और बैलेंस्ड डाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है? तो दोस्तों, अगर क्लियर कट तरीके से समझा जाए तो न्यूट्रिशन के तीन पिलर्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। सिंपल है ना? तो अगर इंडियन खाने के हिसाब से देखा जाए तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सोर्सेस बदलते हैं। नॉन वेज में मीट, फिश, ये सारी चीजें आ जाती हैं, और वेज में मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही। इसके अलावा अगर आप एग्स खाते हैं तो एग्स भी प्रोटीन सोर्स हैं, बहुत अच्छे, और नहीं तो दाल तो है ही। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें दोस्तों, तो रोटी, चावल, ब्रेड यानी अनाज से बनने वाली वो सभी चीज़ें, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। और फाइबर्स में आती हैं सब्जियां और सलाद, जिनमें बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन और अच्छी मात्रा में विटामिन होते हैं। तो अगर आपने इन तीन पिलर्स को याद रख लिया तो आपकी न्यूट्रिशनल प्लेट खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। वैसे न्यूट्रिशन के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सारी जानकारी के बाद एक प्यारा सा गाना तो बनता है ना? आपको क्या लगता है, अग्री करते हैं ना आप? तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और फिर वापस आते हैं।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: जी, इस प्यारे से गाने के बाद वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शतरूपा और आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। दोस्तों, हमने अभी तक एक न्यूट्रिशनल प्लेट की बात की थी, मगर हमें ये भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि पोषण और उम्र, यानी कि न्यूट्रिशन एंड एज, दोनों साथ साथ चलते हैं। आप अग्री करते हैं ना? एज ब्रैकेट के हिसाब से आपके न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, आपके डाइजेशन की क्षमता चेंज होती है। जैसे कि यंगर एज में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी कि पचाने की क्षमता बहुत तेज होती है, तो एज लेकिन जब बढ़ती है तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड की शिकायत भी हो जाती है। तो देखते हैं इस पर हमारी एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन डॉक्टर मनीषा कालका जी का क्या कहना है।
3: न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो हर एज पे न्यूट्रिशन अलग अलग होता है, हर एज पे खान पान अलग हो जाता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जब हम करते हैं तब जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चों की जो जिंदगी है वो उनकी ग्रोथ, उनकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। तो हमें उन्हें बहुत ही अच्छा खाना देना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन देना चाहिए, दालें देनी चाहिए, दूध दही का सेवन कराएं। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, तो कोशिश करें जंक फूड की जो मात्रा है वो नियमित रखें, बहुत सीमित रखें, बहुत ही एक्सेस मत करें। अगर आप मॉल में जाएं तो देखें रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं, थोड़ा सा कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा हम बच्चों को सिखाएंगे ना, उनका जो भविष्य है वो आगे वैसा ही बनेगा। मैं ये नहीं कहती कि कभी कभी बर्गर नहीं खाना चाहिए, पिज्जा नहीं खाना चाहिए, मगर क्या हम खा रहे हैं ये सोच के खाएं, कब खा रहे हैं ये सोच के खाएं। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, बिस्किट्स ओकेजनली सब बहुत अच्छे हैं, बट उन्हें रूटीन में ना लेकर आए। कभी कभी खाएं, अच्छा लगता है, रोज की डाइट में से शामिल ना करें। जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सक्यूज आता है, हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, टाइम तो सबके पास उतना ही होता है, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है, मगर क्या जरूरी है, कितना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जीवन में किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट स्किप मत करें, लंच बहुत लेट ना लें, चाय के साथ बिस्किट्स ना लें, और डिनर भी बहुत ज्यादा हैवी ना करें। जैसा कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, रात में 11-12 बजे डिनर करते हैं, कोशिश करें डिनर थोड़ा पहले कर लें, 8 या 9 बजे तक डिनर कर लें। आपके सोने और आपके खाने के बीच में कम से कम 1.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं।
2: बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हमें डॉक्टर मनीषा कालका जी द्वारा पता चली है कि आपने खाना खाया तो, लेकिन खाना पचाने का समय भी आपको अपने शरीर को देना है, यानी कि सोने से तुरंत पहले ही खाना नहीं खाना है, सोने से 1 या 1.5 घंटे पहले ही आपको अपना डिनर कर लेना है। और एज के हिसाब से एक्सरसाइज और फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो भी आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, और एट द एंड ऑफ द डे

आपके न्यूट्रिशन, आपके पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी को पहले से फिट नहीं रखेंगे, तैयार नहीं रखेंगे, तो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कैसे होंगे। एक सर्टेन एज के बाद रेगुलर मेडिकल चेकअप, सप्लीमेंटेशन दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं और इस पर आगे हम और भी बातें करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब एक म्यूजिकल ब्रेक का समय आ गया है, डोंट यू थिंक? तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और उसके बाद वापस आते हैं।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: जी, फीमेल लिसनर्स को डेडिकेटेड ये प्यारा सा शो शत्रुबा सुन रहे हैं आप। और आप हैं आज मेरे यानी हर्षा के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, पोषण की। मुझे लगता है कि हमारी प्यारी फीमेल श्रोताओं के लिए स्पेसिफिक तरीके से न्यूट्रिशन की बात करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स हम लोग शत्रुपा सुन रहे हैं, और लिसनर्स जो हमारी प्यारी फीमेल लिसनर्स हैं, महिला श्रोताएं जो हैं, उनके लिए स्पेसिफिक बात करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ना, 30 के बाद महिलाओं में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होने लगते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो मेटाबॉलिक चेंजेस भी होते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा धीमी पड़ने लगता है और बोन डेंसिटी भी थोड़ी सी कम होने लगती है। तो आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और मनीषा जी ने भी, डॉक्टर मनीषा जी ने भी इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, आइए सुनते हैं।
1: फीमेल हम क्या करते हैं कि हम अपने न्यूट्रिशन को ना बहुत पीछे रख लेते हैं। पहले हम घर वालों की चिंता करते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं, फिर हम अपने बारे में सोचते हैं। बिल्कुल चिंता करिए, अच्छी बात है, मगर अपना भी ख्याल रखिए। तो पहले अपना खाने पीने का ध्यान रखिए, अपने लिए भी सोच लीजिए कि आपको भी जीवन जीना है। आप सही रहेंगे तो घर परिवार सही रहेगा। तो सबसे पहले अपने लिए दूध दही का सेवन जरूर खाने में इस्तेमाल करें। प्रोटीन के लिए दालों का सेवन जरूर करें। कोशिश करें कि वजन ना बढ़ने दें, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो भी एक्सरसाइज हो सके वो ज़रूर करें। और जब बात होती है आयरन और कैल्शियम की, फीमेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फैमिली को हेल्दी रखना है तो ना खुद को भी पहले हेल्दी रखना पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैं अपनी फीमेल्स को देना चाहती हूँ कि आप बैकबोन है फैमिली की। तो सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा, क्या बात कही उन्होंने, आप बैकबोन है फैमिली की। तो आपको ये बात बिल्कुल भी किसी कीमत पर भूलनी नहीं है। आपको अगर अपना ख्याल आप नहीं रखेंगे तो आप दूसरों का ख्याल कैसे रख पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए, जैसा कि डॉक्टर मनीषा मैम ने भी बताया हमें, कि हमें याद रखना है कैल्शियम विटामिन D3, आयरन विटामिन B12, फॉलिक एसिड और साथ ही साथ ओमेगा 3 और प्रोटीन। जी, इन सभी का रेगुलर चेकअप कराने और खाने के साथ साथ सप्लीमेंट्स द्वारा पूर्ति करते रहने चाहिए। आई होप हमारी सभी फीमेल लिसनर्स इन चीजों का ध्यान रखेंगी। और अब जरा आगे की बातें करने से पहले एक प्यारा सा गाना सुनते हैं, क्योंकि देखिए ना 12:41 हो रहे हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट बातें जब हम लोग सुनते हैं, उनको थोड़ा सा समझते हैं, तब तक बीच बीच में बैकग्राउंड में एक प्यारा सा गाना भी तो होते रहना चाहिए कि नहीं। तो ये है आहिस्ता आहिस्ता।

दोस्तों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शतरूपा, मेरे यानी हर्षा के साथ, ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो। आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने इतनी सारी बातें कर ही ली हैं, तो हमें आजकल के सोशल मीडिया और फूड ट्रेंड्स की बातें भी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे कि फ्रूट डाइट या कार्निवोर डाइट। अब जो हमारे दोस्त नहीं जानते हैं, फ्रूट डाइट वो डाइट है जिसमें सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, और एक कार्निवोर डाइट है जिसमें कहते हैं कि आप सिर्फ नॉनवेज खाइए, तो शायद आपके क्रॉनिक डिजीजेज में, यानी कि अगर आपको आर्थराइटिस वगैरह है तो इसमें मदद मिलेगी, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे फूड ट्रेंड्स चल रहे हैं, एंड आई थिंक इस बात पर हमें बड़ी गंभीरता से इस चीज़ को समझना चाहिए कि एक्सट्रीम में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अगर आपको कुछ जानना ही है अपने बारे में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डाइटिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से स्पेसिफिक डाइट बना कर देंगे। तो दोस्तों, नीम हकीम खतराए जान, तो कभी भी इस बात को ना भूलिएगा, और साथ ही साथ 100.7 एफएम रेनबो भी ज़रूर सुनते रहिएगा। प्यारे प्यारे गानों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ यूं ही थोड़ी साझा हो जाती है।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: ऑल राइट दोस्तों, 12:54 हो चुके हैं, यानी कि शो को रैप अप करने का समय आ गया है। डॉक्टर मनीषा मैम, उन्होंने भी लास्टली ओवरऑल तरीके से आज के विषय पर आपसे कुछ कहा है, आइए सुनते हैं कि उन्होंने जाते जाते क्या कहा।
1: लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे श्रोताओं से जरूरी कहना चाहूंगी, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी लाइफ को कलरफुल बना के रखिए। खाने में कलर्स का इस्तेमाल करें, यानी कि दूध, दही, पनीर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपकी खाने की थाली रंगीन हो और पोषण सीमित हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।
0: जी बिल्कुल सही कहा मैम ने कि आपकी थाली अगर कलरफुल होगी तो सब कुछ अच्छे से आप अपने लिए नेविगेट कर पाएंगे, अपने शरीर को अच्छा रख पाएंगे। जाते जाते मैं तो यही कहूँगी दोस्तों कि न्यूट्रिशन ही आपके स्वास्थ्य की कुंजी है, आपको अपने पोषण का ध्यान पूरी तरीके से रखना चाहिए। सो दैट्स इट, इस प्रोग्राम शत्रुपा में आज इतना ही, बट डोंट वरी, न्यूज ब्रेक के उस पार मैं मिलूंगी आपसे होटो पे तेरी बात कार्यक्रम के साथ। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा।

नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नवा राष्ट्रीय पोषण माह 2026 बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरू किया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा शुरू किए जाने वाले 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। इस वर्ष का अभियान मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के दूसरे चरण के अंतर्गत संशोधित पूरक पोषण कार्यक्रम SNP दिशा निर्देशों के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। पोषण माह 2026 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा। इनमें आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक भागीदारी और जवाबदेही तथा बच्चों के विकास के लिए पोषण, प्रारंभिक प्रोत्साहन और शिक्षा शामिल है। प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत की नींव के रूप में सुपोषित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप पोषण अभियान वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पोषण को देश के विकास के एजेंडे के केंद्र में लाना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक और विशेष शिक्षकों CWSN के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा स्पेशल TET का विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है। परीक्षा 3 नवंबर को होगी। देश में वाहन खुदरा बिक्री अगस्त में 17.51% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि यह वृद्धि मॉनसून की वजह से आई। मौसमी सुस्ती और त्योहारों के देर से शुरू होने के बावजूद GST 2 से बनी तेजी के कारण हुई। भारत में पहली बार यात्री वाहनों की बिक्री में वैकल्पिक ईंधन CNG हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक की हिस्सेदारी 41.95% हो गई, जो पेट्रोल की 40.85% हिस्सेदारी से अधिक है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के MD संदीप कुमार ने बताया कि आज गाजीपुर पहुंचकर उन्होंने शहर के रोजा इलाके में स्थित बिजली विभाग के वर्कशॉप स्टोर और लाल दरवाजा पावर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बारिश और बाढ़ को देखते हुए बिजली आपूर्ति को लेकर अफसरों को निर्देश दिए। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

जी दोस्तों, 1:04 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में और प्रोग्राम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात, जिसमें मैं यानी कि हर्षा हूँ आज आपके साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें और उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगी कुछ बहुत ही अच्छे से सवालों के साथ, जिनका आपको मुझे देना है जवाब ऑन FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। लेकिन वो सवाल क्या होगा उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, ज़रूर पूछूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी ही देर में इलाकाई खबरों के बाद।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया और रामघाट का जमीनी मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने सैलाब से मुतासरा 800 खानदानों में इमदादी सामान, बेघर खानदानों को रिहाइश के लिए जमीन के अलॉटमेंट सर्टिफिकेट और इमदादी रकम तकसीम की। वज़ीर-ए-आला ने लोगों को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में पूरी ताकत और हसासियत के साथ खड़ी है।
1: आपदा की इस घड़ी में आप सबको राहत सामग्री के साथ साथ मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। बाढ़ की चपेट में या अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर आता है, बाढ़ की चपेट में आके पूरा घर बह गया है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखता तो प्रधानमंत्री आवास और नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास और जमीन का पट्टा तत्काल दे दो।
0: इस दौरान जनाब योगी ने सैलाब से मुतासरा लोगों से बराह रास्त बातचीत की और उनके मसाइल सुने। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल सैलाब से मुतासरा जिले चित्रकूट का मुआयना करने के बाद राहत और बाज़ाबादकारी की कोशिशों का जायजा लेने के लिए अपनी सरकारी रिहायशगाह पर सीनियर अहदेदारों के साथ मीटिंग की। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जानी चाहिए, फसलों और मकानात के नुकसान का फौरी सर्वे किया जाए और अहल अफराद को कवायद के मुताबिक इमदाद फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत की कि दरियाए मंदाकिनी के कैंटमेंट में एरिया में तजावजात की निशानदेही करके उन्हें हटाया जाए। दरिया पर बनाए गए फुट ओवरब्रिज का सेफ्टी ऑडिट कराया जाए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए ठोस एक्शन प्लान बनाया जाए कि गटर और ड्रेन का पानी किसी भी हालत में मंदाकिनी में न जाए। उन्होंने हिदायत दी कि चित्रकूट धाम के ताजिरों और खानकाहों को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जाए और मदद फराहम की जाए और मुस्तकबिल में ऐसे हालात से होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए एक तवील मुद्दती एक्शन प्लान भी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि सैलाब से मुतासरा किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे जल्द मुकम्मल किया जाए और मुस्तहक किसानों को कवायद के मुताबिक मुआवजा फराहम किया जाए। मूसलाधार बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत के 24 अजला सैलाब की जद में हैं और कई दरिया अब भी तुगियानी पर है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। प्रशासन ने गर्रा और खाखरा नदियों के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के कारण लगातार कटान हो रही है और यातायात बाधित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: श्रावस्ती जिले के जमनाहा तहसील वीरपुर लोहाकिया में दरियाए राप्ती के तेज बहाव ने आसपास की जमीन को डुबा दिया है। बिजनौर, बदायूं, रामपुर और पीलीभीत में सैलाब और बारिश की वजह से स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है। कल 4 बच्चे कानपुर में, 1 बदायूं में और 3 महोबा में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबकर हलाक हो गए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल और मसनूई ज़हानत, AI और डीप टेक जैसी नई टेक्नोलॉजीज खवाइंदगी पर जोर देते हुए आज कहा कि तालीम, सेहत, ज़राअत, सनत और रोजगार के शोबों में नए मौके पैदा कर रही हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी की पाती के उन्वान से एक पोस्ट में वजीर आला ने कहा कि तालीम सिर्फ बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाने तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें इल्म, इकदार, नज्म व जब्त, खुद एतमादी और समझ भी फराहम करनी चाहिए जो उनकी जिंदगी को सही सिमत में ले जा सके। उन्होंने कहा, आज टेक्नोलॉजी तेजी से हमारी जिंदगियों को बदल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत रवायती इल्म को जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी, इख्तिरात और महारतों से जोड़ रही है। 8 सितंबर को मनाए जाने वाले आलमी में ख्वाइंदगी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिन हमें यह अहद करना चाहिए कि हर बच्चा स्कूल जाए और हर तालिब इल्म को मियारी तालीम हासिल हो और हर शहरी ख्वाइंदगी के साथ साथ डिजिटल नॉलेज और AI से भी आगाह हो। हज 2027 के लिए मुंतखब आजमीन हज के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस टेस्ट को 2 मरहलों में लाजमी करार दिया गया है। पहला मरहला इंतखाब के बाद और दूसरा हज परवास से पहले होगा। उत्तर प्रदेश रियासती हज कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद तारिक ने बताया कि पहले मरहले में आजमीन हज को सरकारी तिब्बी मरकज में एलोपैथिक डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। इस सिलसिले में तमाम अजला के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायत जारी कर दी गई है। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजाहत बुध को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी से नवी राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का आगाज करेगी। इस साल नवे राष्ट्रीय पोषण माह का थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी है। बागपत जिले के खेकरा थाना इलाके में पीर को देर रात एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, तकरीबन 32 लोग जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब राजस्थान से बदायूं जा रही मुसाफिरों से भरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और बेकाबू होकर उलट गई। SP बागपत सूरज कुमार राय और जिला मजिस्ट्रेट स्मिता लाल ने मौके पर पहुंचकर वाकये की जानकारी हासिल की। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

श्रोताओं, अभी अभी आप सुन रहे थे इलाकाई खबरें, और अब एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं मेरे यानी हर्षा के साथ होठों पे तेरी बात कार्यक्रम पे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: दोस्तों 1:22 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं होठों पे तेरी बात, मेरे यानी हर्षा के साथ। और दोस्तों अब समय आ गया है कि मैं आपसे वो सवाल पूछूं जिससे आप जवाब देकर मुझसे ईमेल पे इंटरेक्ट कर पाए। तो मेरा सवाल तो बहुत ही सिंपल सा है, देख रहे ना, आजकल मॉनसून का सीजन चल रहा है, बारिश का सीजन चल रहा है, और बारिश हमें सिर्फ मौसम की वजह से ही नहीं अच्छी लगती, हमें सिर्फ फीलिंग की वजह से ही नहीं अच्छी लगती, बारिश हमारे साथ बहुत सारी मेमोरीज का हिस्सा होती है। एम आई राइट? तो बस वही मेमोरी आपको शेयर करनी है मेरे साथ। आपके पास अगर कोई ऐसी फनी सी मेमोरी है या कोई आपकी ऐसी यादें

है जो बारिश से जुड़ी हुई है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें बहुत संजो कर रखते हैं, तो बस आपको वही मेमोरी शेयर करनी है मेरे साथ। और करना क्या है आपको, बस मैसेज अपना ईमेल के थ्रू मुझ तक पहुंचाना है onfmakashwani@gmail.com। तो मैं आपके ईमेल्स का इंतजार कर रही हूँ, और तब तक के लिए हम लोग सुनते हैं एक बड़ा ही प्यारा सा गाना, और उसके बाद उम्मीद है आपके खूब सारे मैसेजेस एंड ईमेल्स मेरे पास पहुंच चुके होंगे।

जी, ए आर रहमान जी की बहुत ही खूबसूरत और जानदार आवाज़ में अभी अभी आप सुन रहे थे दीवाना दीवाना फिल्म तेरे इश्क में से। और ये गाना ना दोस्तों मुझे बहुत बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका जो पीछे म्यूज़िक प्रोडक्शन हुआ है, जो इसमें हर एक आवाज़ खनक के आती है, एंड ऑफ कोर्स सर ने इतना प्यारे तरीके से गाया है। ये कव्वाली और जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है हमारा, उसका एक मिक्सचर, एक बहुत ही सुंदर सा संगम एक बन के निकला है इस गाने में। एंड वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तब भी मैं इस गाने को ज़रूर सुनती हूँ। खैर, अब मैंने गानों के बारे में तो बहुत बात कर ली, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल भी तो पूछा था, आपको याद है कि नहीं याद है? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को याद है, क्योंकि मेरे पास ईमेल्स आ चुके हैं। सबसे पहला ईमेल है संजू देवी जी का, जिन्होंने कोटा से मुझे ईमेल लिखा है, और उन्होंने ये लिखा है कि अजीब बात है कि मैं अब इस याद पर हंसती हूँ, जबकि जब ये चीज़ हुई थी तो बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैं एक दिन छत पर बारिश में नहाने गई और फिसल गई, और कई दिनों तक मैं चल नहीं पाई, इतनी तेज़ चोट लगी। लेकिन अब जब याद करती हूँ इस किस्से को तो बहुत हंसती हूँ, और घर वालों के साथ खूब हंसी मजाक होता है। वाह संजू जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारी ऐसी मेमोरीज होती हैं, जिस वक्त हो रहा होता है उस वक्त लगता है अरे भगवान क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, लेकिन जब आप बहुत समय बाद उन चीज़ों को याद करते हैं, उन इंसिडेंट्स को याद करते हैं, तो आपको हंसी आती है, एक अलग ही तरीके से आप उन चीज़ों को याद करते हैं। और साथ ही साथ रानी साक्षी जी, रानी साक्षी जी, वाह, दो नाम है आपके नाम में। रानी साक्षी जी का मैसेज आया है मेरे पास बनारस से, और देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने कहा है कि जब भी बारिश होती है तो हमारे सारे रिश्तेदार हमारे घर आ जाते हैं, और मुझे पता नहीं, वैसे तो बहुत ही मेहनत लगती है, हमेशा सबकी डिमांड होती है चाय पकौड़ी बनाने की, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि सभी लोग साथ में हंसी मजाक करते हैं। वाह, अगर ऐसा एक रिचुअल है आपके फैमिली में कि सभी रिश्तेदार बारिश के टाइम पे, मॉनसून के टाइम पे आपके यहाँ आ जाते हैं, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और ये पकौड़ी और चाय के साथ जो एक अलग सा बॉन्ड है हमारा, और बारिश के मौसम में स्पेशली, क्या कहा जाए, ये फीलिंग्स, कुछ फीलिंग्स ना शब्दों में बयान नहीं होती हैं। तो 1:47 का समय हो रहा है, और आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं एफएम आकाशवाणी लखनऊ पे, fmakashwanilakhnau@gmail.com पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपनी प्यारी मेमोरीज बारिश से रिलेटेड। तो अब आप लोग मैसेज जब तक लिखेंगे तब तक एक प्यारा सा गाना तो होना चाहिए ना, तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना अरमान मलिक जी की आवाज़ में, और उसके बाद वापस आते हैं।

ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

राशि दिलिक मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने की 7 तारीख व दिन है सोमवार। अब आरंभ होता है आज का प्रसारण। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी रूम में उपस्थित रहेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रीमती संगे छोमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री हिमांतो स्वर्गरी और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री अमल कुमार दास, मंपा उद्घोषक श्री लुपसिंग तुपदेन तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका गेंदन धामो। आकाशवाणी तवंग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:00 हैं। श्रोताओं, अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मुद्दे न्यूज, तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: breakthrough meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadimul Haq's Urdu Daily over money laundering. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
2: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
3: Ours is a very trusted relationship.
4: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
3: Ratification likely in the coming future.
1: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल

0: के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। डॉ. जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लक्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लक्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
2: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहां से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
4: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च और रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है इक्विपमेंट है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको, स्लैब्स को रिमूव करने के लिए इन्फ्लेटेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है। ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है, और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें कैनाइन या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
5: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की

0: की क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
3: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 डूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालिंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंट को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01123104812371717 और 23314444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ विपक्षी बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में

0: मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में अरेना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना के तहत आज सुनिए चंद हिंदी भक्ति गीत सुरेश वाटकर के आवाज में।

भक्ति गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरेश वाडकर के आवाज में कृष्ण राधा भक्ति गीत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम वंदना जारी है इन्हीं कलाकार के।

निजी श्रोताओं प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए मार्तो कंदक के आवास में चंद आधुनिक गालो गीतों का।

श्रोताओं अभी आपने सुना सुरेश वाडकर के आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं।

विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत श्रोताओं इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं। मर्तो कमदक की आवाज में चंद आधुनिक कालो गीतों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत जारी है इन्हीं कलाकार की आवाज में।

श्रोताओं आप आनंद ले रहे थे मर्दों कमदक और साथियों की आवाजों में चंद आधुनिक कालो गीतों का। इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीत

0: पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए पीएम श्री जेएनवी तावंग के 11वीं कक्षा के छात्रा छोटिन सोमू से प्लास्टिक मुक्त जीवन का महत्व विषय पर एक वार्ता।
1: नमस्कार एवं टाशी दिलेक, मैं छोटिन सोमू पीएम श्री जेएनवी तावंग कक्षा 11वीं की छात्रा। आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है प्लास्टिक फ्री जीवन का महत्व। प्लास्टिक आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम प्लास्टिक बोतल, थैली, डिब्बा और ना जाने क्या क्या। हमें यह सुविधाजनक तो लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही प्लास्टिक आज हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है। प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह जल्दी नष्ट नहीं होती है। एक प्लास्टिक को नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और यह हमारी पानी, हवा और मिट्टी को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। प्लास्टिक से निकलने वाली जहरीले गैस हमारी भोजन और पानी में मिलकर गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे कि कैंसर। प्लास्टिक में मौजूद BPA जैसे गैस कैंसर का कारण बन सकते हैं और साथ ही शरीर की बीमारी, त्वचा रोग आदि। प्लास्टिक प्रदूषण आज केवल मानव जीवन का नहीं बल्कि जानवरों और समुद्र जीव पर भी गंभीर खतरा है। जब यह प्लास्टिक पानी में पहुंचता है तो मछली और समुद्र जीव इसे भोजन समझकर निगल लेते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। प्लास्टिक आज शहरों की समस्या नहीं बल्कि इसका सबसे गहरा असर किसानों की खेत पर पड़ता है। खेतों में फैले प्लास्टिक मिट्टी, फसल और किसान तीनों को नुकसान करता है। यह मिट्टी की उर्वरता को खत्म करता है, फसल की पैदावार पर भी असर पड़ता है। साथियों, अब सवाल यह उठता है कि क्या इस समस्या को रोक सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएं तो बड़ा बदलाव संभव है। हमें कपड़े या जूट के थैली को इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतलें की जगह कांच की बोतल अपनाइए। दूसरों को भी प्लास्टिक के नुकसान के बारे में जागरूक करें। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाले पीढ़ियों हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी हमारी निजी संपत्ति नहीं है बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है। आज पूरे विश्व में प्लास्टिक मुक्त जीवन अपनाने की आवश्यकता है। भारत जैसे महान देश में जहां प्रकृति को माँ का दर्जा दिया जाता है, वहां प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है। हमें अपने कृतियों को समझते हुए स्वच्छ और सुरक्षा पर्यावरण को देश में स्थापित करना होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और स्वस्थ जीवन चाहिए तो हमें आज से ही प्लास्टिक मुक्त जीवन अपनाना होगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प ले कि प्लास्टिक को ना कहेंगे और प्रकृति को हाँ कहेंगे। प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना पीएम श्री जेएनवी तावांग के 11वीं कक्षा के छात्रा छोटिन सोमू से प्लास्टिक मुक्त जीवन का महत्व विषय पर एक वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए श्रोताओं सुनते हैं RBI द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
3: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
0: तो चलिए श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं।

लहू पर केंद्रित नगमों के कार्यक्रम नारी संगीत को लीजिए। नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा प्रस्तुत है चक दे इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई के आवाज में। गीत के बोल है जयदीप साहनी के और संगीत सलीम सुलेमान का।

श्रोताओं, कार्यक्रम नारी संगीत का दूसरा नगमा प्रस्तुत है नीरजा फिल्म से कविता सेठ के आवाज में। प्रसून जोशी द्वारा शब्दबद्ध इस गीत को संगीतबद्ध किया है विशाल खुराना ने।

0: अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया के स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स OTT पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।
1: आइए साथियों, कार्यक्रम नारी संगीत का अंतिम नगमा सुनते हैं। आइए आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और सोना मोहापात्रा ने। इस गीत को शब्द दिया है कुमार ने और संगीत विशाल शेखर ने।

0: संगीत समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं आरबीआई द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
1: किधर है
2: बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट?
1: ये तो झटपट काम है।
2: कैसे?
1: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
2: और बाकी चेंजेस?
1: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
3: आरबीआई कहता है
4: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
0: चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम नारी, माफ कीजिएगा, गीत मंजरी को लीजिए। गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा हमने चुना है जब तक है जान फिल्म से, हर्षदीप कौर के आवाज में। इस गीत को रचा है गुलजार ने और संगीत से सवारा है ए आर रहमान ने।

तुम मिले फिल्म से आनंद लीजिए कार्यक्रम गीत मंजरी के दूसरे नगमे का, जो कि है नीरज श्रीधर के आवाज में। गीत के बोल है कुमार के और संगीत है प्रीतम का।

0: हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें, और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजरी का अगला नगमा प्रस्तुत है क्रुक फिल्म से निखिल डिजूजा के आवाज में। गीत के शब्द है कुमार के और संगीत प्रीतम का।

मन मर्जिया फिल्म से श्रोताओं सुनिए कार्यक्रम का अगला नगमा एमी विर्क और शाहिद मालिया के आवाजों में। शैली द्वारा शब्दबद्ध इस गीत को संगीतबद्ध किया है अमित त्रिवेदी ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। तो इन नगमों के कार्यक्रम को जारी रखने से पहले आइए सुनते हैं अटल पेंशन योजना द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: तो लीजिए श्रोताओं, अगला नगमा प्रस्तुत है बर्फी फिल्म से, पापोन और सुनिधि चौहान के आवाजों में। नीलेश मिश्रा द्वारा शब्दों में पिरोए गए इस गीत को संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया हीरो फिल्म से मोहित चौहान और प्रिया पंचाल के आवाजों में एक गीत का, जिसे रचा है निरंजन अयंगर ने और संगीत से सवारा है सचिन जिगर ने। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मंजरी का अंतिम नगमा राजनीति फिल्म से, जिसे शब्दबद्ध किया है इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध प्रीतम ने तथा इस गीत को स्वर दिया है मोहित चौहान और अंतरा मित्रा ने।

0: श्रोताओं, इन्हीं आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों के साथ कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं समाप्त हुआ।
1: मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से। क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से वेव्स OTT ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माई वेव्स

0: सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें, अपना ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। जेम्स ऑफ इंडिया, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:31 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए पंडित हरि प्रसाद चौरासिया से बांसुरी वादन का। राग है मध्यम सारंग तथा तबले पर संगत दे रहे हैं सबीर खान।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया पंडित हरि प्रसाद चौरासिया से बांसुरी वादन का। इसी के साथ ही शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम रागरंग अब समाप्त होने को है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, आपसे चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्र परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सी.वी. राधाकृष्णन ने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सी.वी. राधाकृष्णन चार पूर्वोत्तर राज्य

0: के दौरे के तहत कल ईटानगर पहुंचेंगे। 9 सितंबर को वे अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे और विधानसभा गैरली सह संग्रहालय का दौरा करेंगे। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB ईटानगर द्वारा अरुणाचल प्रदेश के पत्रकारों के लिए पहली बार गुजरात प्रेस टो का आयोजन। बासार विधायक न्याबू जीनी दिर्ची ने आज बासार स्थित जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला सेवा संकल्प अभियान 2026 में भाग लिया। सेंट क्लारेट कॉलेज जीरो में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी और फोसी परियोजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बीराम बहागे ने नामसाई जिला अस्पताल में न्यू ब्लड बैंक सुविधा की आधारशिला रखी। नाचो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव के खुदुखा यूथ एसोसिएशन के गांव ने बुजुर्गों, वरिष्ठ सदस्यों और गांव बूढ़ा के साथ मिलकर अपने गांव के अधिकार क्षेत्र में वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण पर एवं सुरक्षा का संकल्प लिया। और फुटबॉल में भारत ने 20 साल बाद पहली बार AFC अंडर 20 एशियन कप के मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की एक महत्वपूर्ण 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर भी विशेष बल दिया गया।
1: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया। असम स्थित गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजना की आधारशिला भी रखी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 4 पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के तहत कल अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचेंगे। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे और विधानसभा गैरली सह संग्रहालय का दौरा करेंगे। इसके अलावा वे ईटानगर स्थित नेदार नामलो, जवाहरलाल नेहरू राज्य संग्रहालय तथा श्रवण एवं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दोन्यू पोलो मिशन स्कूल का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति के ईटानगर दौरे को देखते हुए पापुमपारे जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से 8 और 9 नवंबर 2026 को पुनः सुने 8 और 9 सितंबर 2026 को जिले में पूर्ण रूप से नो फ्लाई जोन घोषित किया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ड्रोन या किसी तरह के अन्य हवाई उपकरणों के अधिसूचित संचालन आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित कानूनों के प्रावधान के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस महत्वपूर्ण दौरे के मद्देनजर प्रशासन ने NH-415 सहित उपराष्ट्रपति के आवागमन वाले मार्गों पर साफ सफाई और सड़क सुधार कार्यों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB ईटानगर द्वारा अरुणाचल प्रदेश के पत्रकारों के लिए पहली बार गुजरात प्रेस टो का आयोजन किया जा रहा है। PIB ईटानगर के संयुक्त निदेशक उत्सव परमार के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के 9 पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल गुजरात के 7 दिवसीय दौरे पर है। दौरे के तहत पत्रकारों को प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अनुभव के माध्यम से विभिन्न विकास पहलों और शासन की कार्यप्रणालियों को देखने, समझने और उनका दस्तावेजीकरण करने का अवसर प्राप्त होगा। दौरे के तहत पत्रकार सरकारी एजेंसियों, परियोजनाओं, प्राधिकरणों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ संवाद भी करेंगे, जिसमें प्रमुख विकास परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और उनके परिणामों की गहर समझ हासिल की जा सकेगी। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बीराम बहागे ने नामसाई जिला अस्पताल में न्यू ब्लड बैंक सुविधा की आधारशिला रखी। स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अस्पताल में मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए न्यू ब्लड बैंक आपातकालीन और रक्त आधान सेवाओं को मजबूती प्रदान करते हुए जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में मदद रहेगा। इस दौरान वे अस्पताल का दौरा कर प्रमुख सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने सिटी स्कैन रूम, ऑक्सीजन प्लांट और शवगृह समेत विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया तथा अस्पताल में मौजूदा बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा भी की। बासार विधायक न्याबू जीनी दिर्ची ने आज बासार स्थित

0: जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला सेवा संकल्प अभियान 2026 में भाग लिया। ये कार्यशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के समर्पित जनसेवा के और नेतृत्व के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले एक महीने के अभियान के तहत आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में जमीन स्तर पर सेवा संकल्प और समर्पण की भावना के अनुरूप किए जाने वाले कार्यक्रमों और निभाए जाने वाली जिम्मेदारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। सेंट क्लारेट कॉलेज ऑटोनोमस जीरो SCCZ में आज कॉलेज परिसर में ओपन सोर्सेस टेक्नोलॉजी में अफसरों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई IIT बॉम्बे की फोसी परियोजना के प्रति जागरूकता पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यक्रम फोसी परियोजना IIT मुंबई के सहयोग से हाइब्रिड मोड में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन NMEICT के तत्वाधान में किया गया। अपने पारंपरिक क्षेत्र में पक्षियों और जंगली जानवरों की संख्या में भारी गिरावट के मद्देनजर नाचो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में कोदुखा यूथ एसोसिएशन ने गांव के बुजुर्गों वरिष्ठ सदस्यों और गांव बूढ़ा के साथ मिलकर अपने गांव के अधिकार क्षेत्र में वनस्पतियों और वन्य जीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा का संकल्प लिया। संरक्षण अभियान के तहत गांव के प्रमुख स्थानों पर निषेधात्मक साइन बोर्ड लगाए गए हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण और बाहरी लोगों को वन्य जीवों के शिकार तथा वन्य जीवों के लिए नुकसानदायक अन्य गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लक्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लक्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बटेल के मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते के दिए गए एक मजबूत संस्मरण के लिए लक्जमबर्ग का आभार भी व्यक्त किया।
1: Ours is a very trusted relationship.
2: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
1: Ratification likely in the coming future.
0: नेपाल तिब्बत में आए भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हुई। चितवन में सबसे अधिक 363 मौतें हुई है। गत 26 अगस्त को नेपाल में आए विनाशकारी बाढ़ से जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर से दौरा किया और सुरक्षा उपायों पर जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया है कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिला भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा है कि भवन के मालिक के अनदेखी के कारण ये दुखद घटना हुई है। भारत ने AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई है। AFC Under-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। टेनिस में आर्याना सम्बलेंका और कार्लोस अलाकराज अमेरिकी ओपन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में बेलारूस के शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्याना सम्बलेंका ने अमेरिकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अलकराज ने अमेरिका के टॉमी पॉल को पराजित किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1-1-2-3-3-1-0-4-8-1-2-3-7-1-7-1-7-2-3-7-1-0-6-2-3-3-1-4-4-4-4। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इज चेयरिंग द 28th मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल इन पनाजी गोवा टुडे। The council comprises Goa, Gujarat and Maharashtra along with the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. गोवा सीएम प्रमोद सावंत, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल,

0: सवाल पूछूं, अगर कल कोई आपके डिस्ट्रिक्ट घूमने आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ ले जाएं?
1: सोचिए, मैं किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आपकी खास है। शायद वो आपका फेवरेट सनसेट पॉइंट, या फिर वो स्वाद वाला एड्रेस या बचपन वाली गली, या फिर कोई ऐसा मेला जिसके बारे में बाहर के लोग कम ही जानते हैं। बस यही तो आपकी कहानी है और इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया है। अपने डिस्ट्रिक्ट की कहानी रिकॉर्ड कीजिए और दिखाइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जेम छुपा है।
0: तो इंतजार किस बात का? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाइए और माई बेस पे अपलोड कीजिए और आप भी जीत सकते हैं 5 लाख, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास है कई कहानी।
2: मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के तहत चलिए हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर यानी संध्या के 6:20 पर जेदुन लेरिम के तहत सुनिए परम पावन प्रोफेसर जमदों रिम्पोछे द्वारा तावंग मठ में दिए गए प्रवचन का शेष भाग। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार आज शाम 7 बजे, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण आज शाम 7:10 पर। 7:30 पर साप्ताहिक कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत, जिसके तहत हम आनंद लेंगे रिफ्यूजी और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्मों से 2 नगमों का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार आज शाम 7:45 पर, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत के तहत आनंद लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म से विजय प्रकाश और मुंबई कौर के आवाजों में एक देशभक्ति गीत का। आपकी वजह फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने

नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आज रात्रि 8 बजे, जिसमें शामिल है आपकी कसम, प्यार किया तो डरना क्या, बेमिसाल, मिस्टर इंडिया तथा कभी अजनबी थे फिल्मों से चंद सदाबहार नगमे। आज रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। आज रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर आज के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, ये तो रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 8 सितंबर 2026 के दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ, जिसके पश्चात आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम वंदना के तहत सुनिए खिम्मे मठ के लामा तेंजिन गेलसन और साथियों से चंद बौद्ध भक्ति गीत। विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत आनंद लीजिए जुबीन गर्ग और नीलिमा खातून के आवाजों में चंद असमिया नगमों का कल दोपहर 3 बजे। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात के तहत सुनिए पीएम श्री जेएनवी तावंग के 11वीं कक्षा के छात्रा दिकी लामो से जलवायु परिवर्तन का प्रकृति समुदाय पर प्रभाव विषय पर एक वार्ता। कल दोपहर 3:33 पर महिलाओं पर केंद्रित नगमों के कार्यक्रम नारी संगीत के तहत आनंद लीजिए बिल्लू फिल्म से सोहम चक्रवर्ती और आकृति कक्कर, कश्मीर की कली फिल्म से मोहम्मद रफी, वेकअप सिट फिल्म से कविता सेठ तथा ऊंचाई फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव के आवाज में चंद नगमों का। आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत मंजरी कल दोपहर 3:50 पर, जिसमें आप आनंद ले सकेंगे बवाल फिल्म से लक्ष्य कपूर, आकाशदीप सेन गुप्ता और सुवर्णा तिवारी, श्रीकांत फिल्म से जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार, हसीन दिलरुबा फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव, फाइटर फिल्म से बी प्राक, विशाल ददलानी और शेखर रवजानी, योद्धा फिल्म से विशाल मिश्रा, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से जुबिन नौटियाल और कोरस, रुसलान फिल्म से रीतो रीबा, लापता लेडीज फिल्म से अरिजीत सिंह, दो पति फिल्म से परंपरा तंडन तथा अमर प्रेम की प्रेम कहानी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग के तहत आनंद लीजिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथियों से शहनाई वादन का कल शाम 4:30 पर। कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 बजे दैनिक मनपा कार्यक्रम नमधर लेरिम के तहत सुनिए गुनसे गादन रबगेलिंग मठ बुमदिला के आचार्य पासंग सरिंग से परम पावन स्वर्गीय तेरवेद सोना गुनसे रिनपोचे के जीवनी का दूसरा भाग। दैनिक मुख्य सूचना मनपा में श्री लुपसंग तुप्तन से कल शाम 5:35 पर। साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम के तहत सुनिए तावंग मठ में परम पावन प्रोफेसर जमदोंग रिनपोचे द्वारा गुरु योग पर दिए जाने वाले प्रवचन। कल शाम 6 बजे लेरिम सेरा 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर शेदुन लेरिम के तहत सुनिए तावंग मठ में परम पावन जमदुंग रिमुचे द्वारा गुरु योग पर दिए जाने वाले प्रवचन का शेष भाग। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 7 बजे, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता के तहत सुनिए
एलडी स्कॉलर्स होम के 5

0: की कक्षा के छात्र टाशी वर्जर से हिंदी भाषा की एक कविता। साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से कल शाम 7:11 पर, जिसके तहत आप आनंद ले सकेंगे दिल का रिश्ता फिल्म से। अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण के आवाजों में चंद नगमों का। कल शाम 7:25 पर साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोक के तहत सुनिए। तवांग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री टाशी डोंडुप और मनुल सुपर लीग के अध्यक्ष श्री उरियन दोर्जी से यलवा संयंग याचो हाई अल्टीट्यूड स्टेडियम तवांग में आगामी 10 सितंबर 2026 से शुरू होने वाले दूसरे मनुल सुपर लीग पर हुए एक साक्षात्कार। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार कल शाम 7:45 पर, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम गांव में तराने के तहत आनंद लीजिए लता मंगेशकर के आवाज में एक देशभक्ति गीत का। आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत कल रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9:00 News@9। कल रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से अगले दिन प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर कल के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। इन्हीं कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ कार्यक्रम जरोखा यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम शेदुन लेरिम सुनिए चंद ही पलों में। कृपया हमारे साथ बने रहे।
1: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1 to 3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31st अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
2: मीटर में किलो हर्ज क्या चलेने खली थी? मीटर क्या थी? नंग कब चीनी सिंग साने का संयन शिव सुनोटिंग कांग तावा शिव नंबर संयन दान नंबर चुचु से ग्रोह नंगा मखलो उन्हें ता शिदन लेरम चित कोसो दो संयन दशु लेरमा क्या चीज क्या वंग समदर मच चोसी तावा गोंबा चुचुर पेप कन किंदन निंग मेमंग हंगे नाचल तुंडुक लामे नजुर सुंचे नंगो दना संमेचिक मर मुथिय सनासा
3: निवा चुंतु तम्मेदु ताचेचे चुंयो इन नमसा चिरजुचे आतं शबचेचे चुंमे बे इन गावगोनचे ते तुंदाने मोडन चिवियोरे ते कैचुंबचिरे ते ले तंबो वाले डू दिवचिदे मरे तेस कले कावरे मानस दुंबते युजलो सूर्जन सेमा बे दुंबे चासन लें योरे ते दुंबे मेतुं चोगी जेवा तंगे बे तुम्हां कर कर ये बते メンザンやダイヤメブマブヨレ。で、メンザンやダイヤメブイナ、てのチョンタマジョンギ、チェバジアテアジャネ、カレカブレ。てんでインドカリア、ネバトゥエ、ドンデンギカンサ、スドラチャンセンマグドンボイビカンサテツ、ドンバスス、ランランギパンチェンバテチェテ、ドンソンザラジャルソバラテネ、ションチムチャザン、トゥサンチェマトバイネ、ドンソンラジャルソバラテネ。 メトゥンチョウモシングラティケチムシタレメトゥンチョウモシンバイナテレテツマグベトンマグベタブシチェアレジャマチンテンタブシチェアギコブチェヨングレラジョンイナナサシャドンチェトヤチヨレタテンデギチェベ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुद्दुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुद्दुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यवसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा, राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: समारोह गोवा के तलेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंधन निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि

अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Superintending engineer, executive engineer, assistant engineer, and junior engineer have also been suspended with immediate effect. She said buildings with a fifth floor across Delhi have been ordered to be sealed immediately. The death toll in the Satyaniketan building collapse in New Delhi has reached 7. The search and rescue operation has completed at the site. All Indian Institute of Medical Sciences AIIMS in Delhi informed that a total of 12 victims were brought to the hospital. Of them, 6 died and 1 later succumbed to injuries. AIIMS added that 3 individuals who were rescued are in critical condition while 2 are stable. Of them, 1 has been discharged. The Election Commission today announced by-poll to Nagaon Lok Sabha seat in Assam. It has also announced assembly by-polls for 2 seats each in Tamil Nadu and West Bengal and 1 seat in Puducherry. The Commission said Madura Ratnakam and Dharapuram seats in Tamil Nadu, Reji Nagar and Nandigram seats in West Bengal and Thattan Chowri assembly seat in Puducherry will go to polls. Notification for the Lok Sabha and assembly by-poll will be issued on Wednesday. The Indian Embassy in China has requested the families of Indian nationals who remain missing in the devastating mudslide and flash flood last month to submit DNA samples to assist in the identification process. The embassy in a statement said, families willing to provide DNA information are requested to submit the relevant data in the internationally recognized CODIS format to the Embassy of India. Reigning world champion Sheetal Devi has confirmed a medal for India by storming into the women's compound individual final on the third day of the Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad today. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार. आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय संध्या के 7:10 हुए हैं. लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण. इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी से सब्जियों में रोग और कीट प्रबंधन विषय पर हुए एक साक्षात्कार. साक्षात्कार करता है आकाशवाणी तवांग की हिंदी उद्घोषिका दुर्जी ड्रमा.
2: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ. श्रोताओं, आज हमने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में एक बार फिर कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी जी को आमंत्रित किया है. तो डॉक्टर अभिमन्यु जी, आपका एक बार फिर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ.
3: धन्यवाद
2: जी. तो श्रोताओं, आज हम डॉक्टर अभिमन्यु जी के साथ चर्चा करेंगे सब्जी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन विषय पर. डॉक्टर अभिमन्यु जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि रोग और कीट में क्या अंतर है तथा किसान यह कैसे पहचान सकते हैं कि फसल में रोग से प्रभावित है या फिर कीटों से.
3: बहुत ही अच्छा प्रश्न है. रोग जो होते हैं ना, प्रमुख रूप से फंगस से होते हैं. फंगस हिंदी में कवक कहते हैं. और इनका जो काजल एजेंट होते हैं वो नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते. बहुत ही माइक्रो लेवल पर इनको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत होती है. इसके अलावा कुछ रोग निमेटोड्स से भी होते हैं. वो भी बहुत टीनी साइज में होते हैं. वो मिट्टी में होते हैं और कोई भी फसल के संपर्क में आते हैं तो फसलों में बहुत सारे सिम्टम डेवलप होते हैं. जैसे कि पत्ती लाल होती है, पीली हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है. तो ये रोग हो गया. इसके अलावा कीट चूंकि आंख से देखे जा सकते हैं.
2: अच्छा,
3: कीट बड़े साइज के होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं. कीट के लार्वल स्टेज ज्यादातर फसलों को नुकसान करती है और कीट प्रमुख रूप से फसलों को किसी न किसी रूप में काटते हैं या पत्ती को काट देंगे, होल कर देंगे. इस प्रकार का लक्षण आता है तो इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रोग और कीट का.
2: क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियाँ बहुत सारे उगाए जाते हैं, कई बार कई लोगों को ये पता नहीं चल पाते हैं कि उनके सब्जी में कुछ तो हुआ है, अच्छी नहीं आ रही है कुछ, या पीले पड़ गए हैं या कीड़े खा गए हैं. ये तो आपने बताया, देख सकते हैं ये जो कीट से जो प्रभावित है उसे तो देखा जा सकता है. लेकिन ऐसा है कि उनको पता नहीं चलता कि प्रभावित किस चीज से हुआ है या फिर इसकी क्या इलाज करे, ये पता नहीं चलते हैं. तो अगर आप जैसे एक्सपर्ट हमारे इस कार्यक्रम में इन सारी चीजों का समाधान भी बताए जाएं तो हमारे किसान श्रोताओं को बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं. अगर हम विशेष रूप से तवांग

0: बारे में चर्चा करें तो तवांग में आपने देखे होंगे अब तक यहाँ पर मिर्चे बहुत लगाते हैं, चिली फार्मिंग बहुत किया जाता है, विशेष रूप से हमारे यहाँ के जो लोकल मिर्चे होते हैं वो लगाते हैं। तो मिर्चे में कई बार ये समस्या आते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं या फिर कीड़े खा जाते हैं, तो ऐसा करके बहुत सारे समस्याएं आने लग। इसको किट से प्रभावित होते हैं रोग से कैसे पहचाने?
1: मिर्च में प्रमुख समस्या जो है एक एंथ्रेक्नोज रोग होता है, उसके कारण होता है ये फंगस फफूंद से होने वाला ये रोग है। इसमें क्या होता है कि मिर्च की पत्तियां ना ब्राउन कलर के हो के ट्विस्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। जब पत्तियां में ब्राउनिश हो जाएगा मीन्स उसका जो हरा कलर है ना वो कम हो जाएगा तो पत्तियां कमजोर हो जाएंगी। उसमें हरा कलर को भी कोई भी पौधे में होता है प्लांट में क्लोरोफिल के कारण होता है। फंगस क्या करता है कि ब्राउनिश कलर होने से मतलब क्लोरोफिल को के अमाउंट को कम कर देता है, जिससे उनका फोटोसिंथेसिस से उनका जो खाना बनने की जो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस वो स्लो पड़ जाती है और पौधा हमारा कमजोर हो जाता है, जिससे हमारा मिर्च का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। पत्तियों के अलावा ये मिर्च की फली लगी है तो उसमें भी भूरे भूरे ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं जो कि बाद में काले भी हो जाते हैं और बड़े स्पॉट में हो जाते हैं। तो ये प्रमुख सिम्टम है, प्रमुख लक्षण है पहचान का कि ये हमारा एंथ्रेक्नोज रोग लगा हुआ है। इसका कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है हम ऑर्गेनिक तरीके से इसका कंट्रोल करें, एक केमिकल का प्रयोग करके करें। तो जनरली तवांग में या पूरे अरुणाचल में हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि केमिकल का प्रयोग न हो तो ठीक है।
0: जी,
1: तो ऑर्गेनिक तरीके से क्या है कि एक बीटी पाउडर होता है बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये बायो कंट्रोल एजेंट होता है। इसका 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पर लीटर वाटर डोज हिसाब से इसको जहां हमारा एंथ्रेक्नोज बीमारी लगी है वहां हम इसको स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। और 10 दिन बाद दोबारा हम इसका स्प्रे बीटी स्प्रे करना चाहिए, हमारा ये जो पत्तों का भूरा कलर है ये सब कम हो जाएगा। यदि रोग बहुत ज्यादा किसी पौधे में ज्यादा लगा है तो हम अपने खेती से उस पौधे को उखाड़ के खेत से दूर गड्ढा खोद के उसमें दबा के ऊपर से मिट्टी ढक दें, क्योंकि नहीं तो फंगस से पूरे खेत में ये रोग फैल सकता है।
0: जी, और वैज्ञानिक तरीके क्या हो सकते हैं मिर्च के जो बीज बुआई से पहले जो हम किए जा सकते हैं?
1: हाँ, सीड ट्रीटमेंट की जैसे बात आती है कि मिर्च में हम जब नर्सरी में बीज लगाते हैं उस समय हम मिर्ची के बीजों को ट्रीटमेंट कर दें और नर्सरी में लगाएं, तब हम उनमें कुछ डिसीज रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास दो तरीका है, एक है ऑर्गेनिक तरीका, एक है इनऑर्गेनिक तरीका। दोनों लाभदायक है, क्योंकि जहां तक हम लोग केमिकल से डरते हैं, केमिकल से डरना चाहिए लेकिन हर केमिकल का एक रेजिडुअल इफेक्ट होता है, एक टाइम बाउंडेड होता है। अधिकतम केमिकल 20 से 25 दिन बाद खत्म हो जाते हैं, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। बाविस्टीन एक फंजीसाइड आता है फंगस को मारने वाला, 1 ग्राम दवा से हमारा 1 किलो तक बीज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या करना है कि उसके बीज के ऊपर चारों ओर दवा को अच्छे से छिड़क के हल्का सा पानी हो करके और मिक्स कर देना चाहिए ताकि वो बीज पर वो दवा चारों ओर से अच्छे से लिपट जाए, तब हमको खेत में डालें। तो क्या हुआ कि उसके ऊपर एक कोटिंग टाइप में हो जाएगी, फंगस जो अटैक करते हैं तमाम प्रकार की बीमारी को उत्पन्न करते हैं उनका अटैक कम हो जाएगा। दूसरा है बायो कंट्रोल तरीके से, उसके लिए ट्राइकोडर्मा से भी हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, मतलब अगर 1 केजी मिर्च का बीज है तो 5 ग्राम, इसको भी इसी तरीके से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक बायो एजेंट है, मिर्च के बीज पर चारों पाउडर को छिड़क के हल्का सा पानी मार के मिक्स कर देंगे तो ये बीज में चिपक जाएगा। फिर हम बीज को नर्सरी में डालेंगे तो हमारा बीज हेल्दी उगेगा, जो मिट्टी में तमाम प्रकार के फंगस होते हैं अटैक करते हैं उससे हमारे नर्सरी में जो बीमारी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा नर्सरी के दौरान ये हम उपयोग इसका कर सकते हैं।
0: अगर सब्जियों में कीटों से प्रभावित होने वाले हैं तो उसके शुरुआती लक्षणों को हम कैसे पहचाने, एक किसान उसे कैसे पहचाने?
1: कीट तो अलग अलग स्टेज पर लगते हैं, जैसे कि हम कोई भी फसल खेत में लगाएं तो एक कटुआ वो क्या करता है, जैसे मिर्चा लगाएं गोभी लगाएं खेत में नर्सरी से उखाड़ के मेन खेत में लगाएं तो पौधे नरम होते हैं, वो क्या करता है कि मिट्टी की सतह से बराबर में रात में निकलता है मेनली और काट देता है, तो जिससे हमारा लगाया वाला ही पौधा कट जाएगा तो आगे प्रोडक्शन तो होगा नहीं। के ट्रीटमेंट के लिए भी दो तरीका है, या तो नीम बेस्ड कुछ ऑर्गेनिक तरीके से मतलब कंट्रोल करने वाला निम्बी सिडीन वगैरह होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या किसान अगर केमिकल वाला रास्ता अपनाए तो उसके लिए फोरेट होता है, पेस्टिसाइड होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। फोरेट महीन दानेदार केमिकल होता है, उसको खेत में जब हम पौधे लगाते हैं स्प्रेड कर देने से जो कटवर्म होता है वो मर जाता है, तो हमारे

0: बच जाते।
1: और जैसे कि तवांग एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर मौसम बदलते रहते हैं, तो क्या बदलते मौसम से हमारे जो सब्जियां हम उगाते हैं उस पे कोई प्रभाव पड़ते हैं?
0: बारिश का मौसम ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, गर्म ज्यादा होता है, उस समय जो कीट होते हैं उनका प्रकोप ज्यादा होता है। तो ह्यूमिडिटी स्पेशली जब गर्म मौसम और ह्यूमिडिटी में कीटों का मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट होता है, और कीटों का मेनली लार्वल स्टेज 90% केसेज में लार्वल स्टेज डैमेज करती है हमारे खेत में। जो फीमेल फ्लाई होती है जो भी कीट की, वो एग लेइंग करती है। एग लेइंग के बाद अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग ड्यूरेशन होता है, कोई एक हफ्ता बाद, कोई 10 दिन बाद वो लार्वल स्टेज में आ जाते हैं। वही लार्वल स्टेज हमारे खेती को डैमेज करते हैं। कभी वो पत्ती पर रेंगते हुए खेतों में देखते हैं, हरे हरे होते हैं, कोई भूरे कलर के होते हैं, वो पत्ती पर जाते हैं, उनका कोई क्लोरोफिल समाप्त कर देता है। मतलब क्लोरोफिल मतलब हरा कलर जो पत्तियों का होता है, क्लोरोफिल से होता है, वो खा के समाप्त कर देता है। कभी क्या होता है कि पत्ती वो पूरा जाली जाली जैसा बना देता है। गोभी में स्पेशली पत्ता गोभी में देखिए, फूल गोभी में वो हरे हरे डायमंड नाम से कीड़ा होता है, डायमंड बैक मॉथ, वो क्या करता है, वो उसकी लार्वल स्टेज क्या होती है, वो फूल गोभी में जाके छेद कर देता है अंदर, तो वो भी हमारा नुकसान करता है। फूल गोभी में भी वही लार्वल स्टेज होती है, वो भी नुकसान करती है, तो उसका अलग से स्मेल, गंदी स्मेल आती है और फूलगोभी का क्वालिटी खराब हो जाता है। विभिन्न प्रकार से अलग अलग किस्मों में, बैगन में देखिए, बैगन में फ्रूट फ्लाई होती है, वो अंडे देती है, वो अंदर जब बैगन से उनका लार्वल स्टेज होता है, बैगन जब मैच्योर होता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो कि खाने के लिए जब हम काटते हैं तो दुर्गंध आता है और हमारी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ऐसे बहुत प्रकार से फल में भी होता है, सब्जियों में भी होता है, अवस्थाएं होती है कीटों की, स्टेजेज होते हैं और वो फसल को नुकसान करते हैं।
1: हमारे ये चर्चा जो है सब्जी फलों में रोग एवं कीटों से प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है, इसी पर हो रहे हैं, तो मैं ज्यादातर यहाँ पर जितने ज्यादा हर सब्जियां उगाते हैं इस पर केंद्रित करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी इस समय बहुत सारे लोग मिर्चे लगाते हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगी। तो जब उसमें फल लगने के समय आते हैं तो जो मिर्चे उसमें लगते हैं उसमें कई बार मिर्चे जो है सिकुड़ जाते हैं, कभी उसमें काले धब्बे पड़ जाते हैं, कई बार फीके से रंग हो जाते हैं, गीले से हो जाते हैं, या फिर पानी से बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों होते हैं? अगर इन सारे जो समस्या होते हैं इनको रोकथाम करने के लिए अभी हम क्या तरीका अपना सकते हैं?
0: वही हम लोग जैसा कि अभी डिस्कस भी किए थे कि में कुछ कीड़े से होता है, कीट से होता है, कुछ बीमारियों से होता है। तो कीट में अभी हमने जिक्र भी किया था कि जैसे डायमंड बैक मॉथ होता है, इसका लार्वा जो है हरे कलर का होता है और पत्तों को, क्लोरोफिल को, मतलब पत्ते के हरा पौधा को खा जाता है, जाली जैसे दिखता है। ये हमारा मिर्च में भी होता है, गोभी वर्गीय फसलों में भी ये होता है, बैगन में भी लगता है ये। तो इसका कंट्रोल के लिए हम ऑर्गेनिक तरीके से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। नीम बेस्ड जो एक हमारा प्रोडक्ट होता है, निम्बिसाइड या निम्बिसिडीन, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग प्रोडक्ट नाम है। इसका डोज जो है 5 ml लिक्विड 1 लीटर पानी में, इस डोज से 5 ml निम्बिसिडीन पर लीटर वाटर हम स्प्रे करेंगे। जब भी हमको खेत में कीट दिख रहा है और उसका एक हफ्ता बाद फिर से दोबारा हम स्प्रे कर दें, तो हम ऑर्गेनिक तरीके से हम इन कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी खेती को बचा सकते हैं। इसके अलावा एफिड्स आते हैं। एफिड्स का प्रकोप जब ज्यादा गर्मी वाला मौसम होता है तब होता है। एफिड क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत ही छोटे, जैसे कि सरसों के दाने के बराबर। वो क्या करते हैं, पत्तियों के निचली सतह पर होते हैं और वो पत्तों का रस चूस लेते हैं। जब पत्तों का रस चूस लेंगे तो पौधे हमारे कमजोर हो जाएंगे, फिर उनमें फोटोसिंथेसिस वगैरह रेट कम हो जाएगा, मतलब पौधों की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो कम हो जाएगी, तो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी है उनका डेवलपमेंट कम हो जाएगा और हमारा खेती को नुकसान हो जाएगा। इसके लिए भी हम निम्बिसिडीन का उपयोग कर सकते हैं, 5 ml प्रति लीटर वाटर इस रेट के हिसाब से। कुछ कटवर्म्स हमने बताया था आपको, कुछ जो कि खेतों में जो पौधे अंकुरित हो रहे हैं वो, या नया रोपे गए पौधे, उनको नरम नरम पौधों को जमीन की सतह से काट देते हैं, उसमें भी हमारे खेती नुकसान हो जाता है। तो के लिए तो एक बीटी पाउडर होता है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, एक ये बायो पेस्टिसाइड है, उसका होता है कि 1 kg प्रति एकड़ की दर से, एकड़ तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर छोटा एरिया है तो 1 gram बीटी पाउडर 1 liter पानी, 1 gram पर लीटर वाटर, इस डोज से हम अगर इसको स्प्रे कर दे तो हम बीटी काटन को बायोलॉजिकल तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी।
0: बोरर्स होते हैं जो कि छेद कर देते हैं फल में, पत्तियों में, पौधों के तने में, स्टेम में छेद कर देते हैं, तो हमारे सब्जियों के पेड़ कमजोर हो जाएंगे, फ्रूट्स क्वालिटी खराब हो जाएगी। स्पेशली बैगन में बोरर का बहुत अटैक होता है, टमाटर में बोरर्स का अटैक होता है, तो हमारी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। तो इसमें भी जो हमने बताया कि बायो

0: तरीके से अगर करना चाहें तो बीटी पाउडर का स्प्रे 1 ग्राम बीटी पाउडर 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें। एक बार में अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो 7 से 8 दिन बाद दोबारा हम स्प्रे कर सकते हैं।
1: पत्ता गोभी या फूल गोभी को लेकर चर्चा करें तो उनमें ऐसा एक बहुत असामान्य सा बाद में वो जाकर आकार लेते हैं और उनके जड़ों में एक गांठ जैसे पाए जाते हैं।
0: हाँ, ये रोग है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक रॉट। एक ब्लैक रॉट होता है, एक क्लब रॉट होता है। पहले क्लब रॉट में आते हैं। क्लब रॉट में क्या होता है कि गोभी वर्गीय फसलों की जड़ें फूल जाती है, गेंदा के आकार के बॉल के शेप में हो जाती हैं। इससे भी क्या होता है कि पौधा कमजोर हो जाता है और हमारा प्रोडक्शन कमजोर हो जाता है। पौधा फूट के उसमें जड़ें फट जाती हैं तो नीचे से न्यूट्रिएंट्स वाटर अपटेक कम हो पाता है, नहीं हो पाता है। अच्छा। तो हमारा प्रोडक्शन स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएगा। हमको क्या करना है कि ट्राइकोडर्मा आता है, ये भी बायो कंट्रोल एजेंट है। इसका हम 10 ग्राम प्रति लीटर वाटर की दर से जहाँ ऐसा दिख रहा है कि पौधों गोभी वर्गीय फसलों की में क्लब मतलब गोल गोल उनकी जड़ें हो रही है तो वहाँ हमको स्प्रे कर देना चाहिए। ब्लैक रॉट की जो बीमारी आती है दूसरी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें क्या है कि जड़ों अंदर से खोखली हो जाती हैं, सड़ने लगती हैं और इसका एक बहुत अच्छा लक्षण पत्तियों पर दिखता है। गोभी वर्गीय पत्तियों पर अंग्रेजी के वी पीले रंग का वी आकार बन जाता है गोभी वर्गीय फसलों में। अगर अंग्रेजी का वी आकार अगर गोभी वर्गीय फसलों में दिखे हमको ये समझ जाना है कि इसकी जड़े में ब्लैक रॉट है, एक फंगस है, वो अटैक कर दिया है।
1: पत्तों पर दिखेंगे?
0: हाँ, ये पत्तों पर दिखेंगे। इसका भी है कि बीटी काटन का छिड़काव करना चाहिए, बायो कंट्रोल एजेंट जो है एसिलस थुरिंजिस इसका फुल फॉर्म होता है, इसका स्प्रे करना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि जहां एक बार में ब्लैक रॉट का अटैक दिखे वहां दोबारा हमको गोभी की फसल 3 साल तक नहीं लेनी है, फसल चक्र अपनाना चाहिए। बहुत खतरनाक बैक्टीरिया ये होता है, प्लस क्रॉप रोटेशन फसल चक्र अपनाना है। फिर एक है हमारा डाउनी मिल्डू आता है, पीला झुलसा रोग। इसमें क्या है कि हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, टमाटर वगैरह में भी हमारी ये बीमारी आती है। इसमें क्या है कि निचले पत्ते पर पीले पीले रंग के धब्बे मिल जाते हैं। जब पीले पीले धब्बे हो जाएंगे तो हमारे फसल कमजोर हो जाते हैं, इनकी वजह से हमारे जो पत्तियां झुलस भी जाती हैं, मुरझा भी जाती हैं। तो इसमें भी हमको ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना चाहिए, 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसमें स्प्रे करने से हम पीला झुलसा रोग मतलब डाउनी मिल्डू को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हम जरूरी चीज ऐड कर दें कि झुलसा रोग ब्लाइट का भी प्रकोप बहुत होता है। यहाँ हमने जो देखा है आलू में प्रमुख रूप से लग रहा है, बैगन में भी लग रहा है और टमाटर में भी लग रहा है, इनमें मेजर है और मिर्च वगैरह में माइनर है। तो झुलसा रोग में क्या होता है कि पत्तियां जो हैं, चाहे आलू की हो चाहे टमाटर की हो, पत्तियां किनारे किनारे से सिकुड़ जाती हैं और सूखने लगती हैं। पहले ब्राउन कलर की होंगी फिर बाद में काले रंग के हो जाते हैं और ज्यादा प्रकोप होने से आलू का खेत हो या बैगन का टमाटर का खेत हो दिखेगा कि पूरा पौधे एकदम मर से गए हैं, झुलस से गए हैं। ऐसा ज्यादा प्रकोप होने ज्यादा अटैक होने पर ब्लाइट का ऐसा दिखेगा। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके कंट्रोल के लिए भी हमको ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करना चाहिए 10 ग्राम प्रति लीटर वाटर की दर से ऑर्गेनिक तरीके से। और इसमें केमिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि ब्लाइट कंट्रोल ऑर्गेनिक तरीके से नहीं हो रहा है तो, क्योंकि ब्लाइट कंट्रोल 10 दिन में ही बहुत तेजी से कहने का मतलब हमारे फसलों को मार देता है, एकदम खत्म कर देता है। क्योंकि जो बायो कंट्रोल एजेंट है बायो तरीके से थोड़ा स्लो प्रोसेस में इनका प्रभाव होता है। तो अगर किसान चाहें तो ब्लाइट कंट्रोल के लिए एक केमिकल का भी सजेशन कर सकते हैं, मैंकोजेब एक रसायन होता है, फंजीसाइड होता है, मैंकोजेब कॉपर का फंजीसाइड होता है। 2 ग्राम प्रति लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम इसको मिला करके और हम स्प्रे करें। एक चीज बहुत जरूरी है, जब भी हम खेतों में कोई भी दवा या कुछ भी स्प्रे करें तो उसमें ध्यान दें कि तेज हवा ना चल रही हो, बारिश ना हो रही हो, ओपन फील्ड कंडीशन में। अगर पॉली हाउस में है तब तो ठीक है, नहीं तो बाहर ओपन फील्ड कंडीशन में तेज हवा चल रही है तो स्प्रे हमारा सही से नहीं होगा। अगर बारिश होने की संभावना है तो भी अभी हम स्प्रे करके जाएंगे वो पानी गिरने से पूरा बह जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, तो उसका भी पौधों में वो ट्रांसलोकेशन अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो भी हमारा वेस्टेज होगा, दवाई का प्रभाव अच्छे से नहीं होगा। तो इन सब बातों को भी हमको स्प्रे करते समय ध्यान देना।
1: कार्यक्रम के अंत में स्वस्थ लाभकारी एवं सतत सब्जी खेती के लिए आप सब्जी उत्पादक किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: अच्छे किस्मों का हम चुनाव करें, अधिक उत्पादन के साथ साथ हमारी बहुत सारे किस्में हैं जो कि बहुत सारे रोग और कीट रोधी रोग रोधी किस्में हैं, तो किसान

0: ऐसे किस्मों का चुनाव करें और तवांग के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वो किस्में हों, कम पानी में हों ताकि पानी की भी हमारी बचत हो, कम न्यूट्रिएंट वाली भी हो, इससे भी हमको न्यूट्रिएंट की भी हो। ऐसी बहुत सारी अनेक विभिन्न प्रकार के फसलों में सब्जियों किस्मों का विकास किसानों ने किया है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट और साथ में हाइडलिंग वैरायटीज हैं। ऐसा करने से हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं, पर्यावरण का भी इसमें ध्यान रख सकते हैं और हमारा खेती से होने वाली इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। जब हमारा लागत कम होगा तो निश्चित रूप से हमारा इनकम बढ़ेगा।
1: तो आज आपने एक बार फिर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में समय निकाल कर आए और हमारे किसान श्रोताओं को सब्जी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन किस तरह से करनी चाहिए इस बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी से सब्जियों में रोग और कीट प्रबंधन विषय पर हुए एक साक्षात्कार। इसी के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:30 होने वाले हैं, तो आइए अब आरंभ करते हैं हमारा अगला साप्ताहिक कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा प्रस्तुत है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाजों में। गीत के बोल है समीर के और संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का दूसरा नगमा प्रस्तुत है रिफ्यूजी फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक के आवाजों में। जावेद अख्तर द्वारा शब्दों में पिरोए गए इस गीत को संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीधे में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

श्रोताओं, इन्हीं नगमों के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन चार पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के तहत कल ईटानगर पहुंचेंगे। 9 सितंबर को राष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे और विधानसभा गैलरी सह संग्रहालय का दौरा करेंगे। इसके अलावा वो ईटानगर स्थित नेदार नामलो, जवाहरलाल नेहरू राज्य संग्रहालय तथा श्रवण एवं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दोन्यू पोलो मिशन स्कूल का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति के ईटानगर दौरे को देखते हुए पापुमपारे जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से 8 और 9 सितंबर 2026 को जिले भर में पूर्ण रूप से नो फ्लाई जोन घोषित किया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ड्रोन या किसी भी तरह के अन्य हवाई उपकरणों का अधिकृत संचालन आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित कानून के प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस महत्वपूर्ण दौरे के मद्देनजर प्रशासन ने NH-415 सहित उपराष्ट्रपति के आवागमन वाले मार्गों पर साफ सफाई और सड़क सुविधाओं कार्य का भी विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज नाहरलगन में राज्य कृषि सूचना केंद्र सह किसान छात्रावास का उद्घाटन किया। यह संस्था किसानों के लिए एक वन स्टॉप सुविधा केंद्र के रूप में काम करेगा, जहां उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों, विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ ही दूसरे स्थानों से आने वाले किसानों के लिए आवास भी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मत्स्य ई वाहनी वाहनों और ई रिक्शों का भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिनका उद्देश्य मछली बिक्री और विपणन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना तथा छोटे व्यापारियों और मत्स्य किसानों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है। इसके बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कृषि नीति को 2025-35, बागवानी नीति 2025-35 तथा मधुमक्खी पालन एवं शहद नीति 2025-35 जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कृषि, बागवानी और शहद उत्पादन की अपार संभावना है, साथ ही ये नीतियां इन संभावनाओं को बेहतर आजीविका, मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधिक समृद्ध अरुणाचल प्रदेश में बदलने के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगा। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के निदेशक नवाम गुंगते ने आज गृह राज्य मंत्री मामा नातुंग से मुलाकात की। बैठक में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग को मजबूत करने, बेहतर बनाने और विचार विमर्श किया गया, जिसमें विभाग की कार्यक्षमता, तैयारियों और जनसेवा प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। इस दौरान अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा संशाधनों विधेयक 2026 पर भी चर्चा की गई। विधेयक 8वीं विधानसभा के 7वें विशेष सत्र में कल पेश किया जाना निर्धारित है। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने आज तोयमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय रिसर्च स्कॉलर फोरम

0: आरजीयूआरएसएफ के प्रथम स्थापना दिवस सह शोधार्थी सम्मेलन में भाग लिया। आरजीयूआरएसएफ को इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर बधाई देते हुए श्री सोना ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट में शोधार्थियों, युवा शिक्षाविदों और विश्वविद्यालय समुदाय के संवाद करने तथा सूचित नीतियों के निर्माण, समाज को मजबूत करने और अरुणाचल प्रदेश के ज्ञान आधारित विषय के निर्माण में शोध की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करने का एक सार्थक अवसर प्रदान किया। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शोधार्थियों की जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और ज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि शोध से ऐसे विचार, नवाचार और समाधान सामने आए जो जनता के लिए भी लाभकारी हो सके। अपने पारंपरिक क्षेत्रों में पक्षियों और जंगली जानवरों की संख्या में भारी गिरावट के मद्देनजर नाचो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों के कोदुखा यूथ एसोसिएशन ने गांव में बुजुर्गों, वरिष्ठ सदस्यों और गांव बूढ़ा के साथ मिलकर अपने गांव के आधिकारिक क्षेत्र में वनस्पतियों और वन्यजीव के संरक्षण एवं सुरक्षा का संकल्प लिया है। संरक्षण अभियान के तहत गांव के प्रमुख स्थानों पर निषेधात्मक साइन बोर्ड लगाए गए हैं। इसके माध्यम से ग्रामीणों और बाहरी लोगों को वन्यजीवों के शिकार तथा वन्यजीवों के लिए नुकसानदायक अन्य गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा जानवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फिशिंग नेट्स एवं अन्य सामग्रियों को भी सार्वजनिक रूप से नष्ट किया गया है। इस बीच गांव समुदाय ने चेतावनी दी है कि निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को समुदाय द्वारा तय किए गए दंड और जुर्माने का पात्र माना जाएगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी NMEICT के तत्वाधान में सेंट क्लेरेट कॉलेज जीरो में अपने ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में अफसरों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के फॉसी प्रोजेक्ट्स के प्रति जागरूकता को लेकर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया। और फुटबॉल में भारत ने 20 साल बाद पहली बार AFC अंडर 20 एशियन कप के मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani Itanagar, the news read by Prem Sharma. Vice President of India C.P. Radhakrishnan is scheduled to visit Itanagar tomorrow as part of his 4 Northeastern States tour. On September 9, the Vice President will attend a special session of the Arunachal Pradesh Legislative Assembly and visit the Assembly Gallery cum Museum. He will also visit another Lamlo, Jawaharlal Nehru State Museum in Itanagar and Dhoni Polo Mission School for the hearing and visually impaired. Ahead of the scheduled visit of the Vice President of India to Itanagar, the Papumpare District Administration has declared a complete no-fly zone for September 8 and 9, 2026 for security reasons. The administration has warned that any unauthorized operation of drones or similar aerial devices will be treated as a violation of the order and may invite strict legal action under the relevant provisions of law. Authorities have also focused on civic cleanups and road improvements along routes like NH-415 ahead of the high-profile visit. Chief Minister Pema Khandu today inaugurated the State Agriculture Information Hub cum Farmers Hostel at Naharlagan. The Agriculture Information Hub cum Hostel is expected to serve as a one-stop facility for farmers, providing information on modern farming practices, schemes and accommodation for visiting farmers. On the occasion, the Chief Minister also flagged off Matsya E-Vahani vehicles and E-Rickshaws aimed at boosting fish vending and marketing infrastructure and promoting clean and sustainable transport for small traders and fish farmers. Later in the day, Khandu released the Agriculture Policy 2025-35, Horticulture Policy 2025-35 and Apiculture and Honey Policy 2025-35. Speaking on the occasion, he said that Arunachal has immense potential in agriculture, horticulture and honey production. These policies will provide the roadmap to turn that potential into better livelihoods, stronger rural economies and more prosperous Arunachal. Director of Fire and Emergency Services Nabam Gungte called on Home Minister Mama Nathung today. The discussion deliberated on strengthening and uplifting the Fire and Emergency Services Department with a focus on enhancing its efficiency, preparedness and public service delivery. Discussions were also held on the

श्रोताओं, इसी देशभक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत अब समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं, यानी वक्त हो चला है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हम आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। तो आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं पहले फरमाइश के साथ, जो कि आया है पैगंग हो के पेमा ताशी नको पासुप सुनम ताशी खुदंग और तेंदावा से। यह गीत है आपकी कसम फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाजों में। गीत के बोल है आनंद बख्शी के और संगीत आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का दूसरा नगमा आइए सुनते हैं। यंग मदन के संगीत सिरिंग और टाशी ड्रामा छुम तथा यूसर के सोनम चटन की फरमाइश पर, जो कि है प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में। इस गीत को रचा है समीर ने और संगीत से सवारा है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अगला नगमा प्रस्तुत है उर्यलिंग विकास नगर तावंग के संगीत प्रेमी लुप्सन पिंदा के फरमाइश पर। यह गीत है बेमिसाल फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, शब्दबद्ध किया है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के तहत। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। तो आइए इस सदाबहार पुराने नगमों के

किले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला नगमा मिस्टर इंडिया फिल्म से, जो कि है किशोर कुमार के आवाज में। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है DHPD लहू के पासंग गुनपो नीमा दावा संगीत ड्रामा और दावा ड्रामा से। गीत के बोल है जावेद अख्तर के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम नगमा प्रस्तुत है कभी अजनबी थे फिल्म से, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के आवाजों में। गीत के बोल है देव कोहली के और संगीत विजय सिंह का। इस गीत की फरमाइशें हमें प्राप्त हुई है मधुवन कॉलोनी तवांग के राहुल से और SBI बैंक कॉलोनी तवांग के ड्रेमा तंजन डेदन और ताशी से।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम

5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब से चंद ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित सुनिए स्पोर्ट्स कैंप, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज़ 9 रात्रि 9 बजे। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में शीतल ने बनाई कंपाउंड महिला वर्ग के फाइनल में जगह, ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगी सरिता। दलित ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन की स्थिति मजबूत, ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाकर रचा इतिहास। यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता में बेन शेल्टन ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह, अल्कराज से होगी अगली भिड़ंत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंट कप विजेता टीम ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। और भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया, AFC फुटबॉल अंडर 20 एशियन कप के लिए क्वालिफिकेशन की उम्मीदें बढ़ी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज से, जो अहमदाबाद में हो रहा है, जहां शीतल देवी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके फाइनल में जगह बना ली है। अहमदाबाद में वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियन और भारत की स्टार पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल ने आज सरिता को सेमीफाइनल मुकाबले में हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: सेमीफाइनल में आज शीतल ने अपनी देश की सरिता को 145 के मुकाबले 143 के करीबी अंतर से हराया। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी बुधवार को फाइनल में कजाकिस्तान की दूसरी वरीयता प्राप्त आईजादा सेइडन का सामना करेंगी। वहीं सरिता ब्रॉन्ज मेडल के लिए चीन की वांग हुईटिंग से मुकाबला करेंगी, जिन्होंने दूसरे राउंड में दुनिया की पहली क्वाड्रपल एम्प्यूटी खिलाड़ी पायल नाग को हराया था। शीतल ने कल महिला कंपाउंड क्वालिफिकेशन में सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर 698 हासिल करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय मेजबानी की शुरुआत को यादगार बना दिया था। 19 वर्षीय तीरंदाज शीतल ने अपना ही एशियाई रिकॉर्ड 1 पॉइंट से बेहतर किया। यह रिकॉर्ड उन्होंने पहले 9वें मेस्टो में दूसरे चरण में बनाया था। इस प्रदर्शन ने आईची नागोया 2026 एशियन पैरा गेम्स से पहले शीतल की शानदार फॉर्म को भी दिखाया, जहां वह कंपाउंड महिला व्यक्तिगत और मिक्स टीम खिताब का बचाव करेंगी। पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टोमन कुमार ब्रॉन्ज मेडल के लिए इराक के अब्बास कादिम से मुकाबला करेंगे। कादिम ने शुरुआती राउंड में राकेश को हराया था। राकेश स्वागु मिलंग से 2 पॉइंट पीछे रहे, जिन्होंने अपने करियर का बेस्ट 702 का स्कोर बनाया। वहीं मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और उनके साथी खिलाड़ी टोमन कुमार 696 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर रहे। राकेश और टोमन ने मिलकर 1398 का स्कोर किया और कंपाउंड पुरुष डबल्स में शीर्ष वरीयता हासिल की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। शीतल देवी ने इस टूर्नामेंट में व्यक्ति

0: गत स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन तो किया ही है, लेकिन मिक्स टीम इवेंट में कैसा रहा है उनका प्रदर्शन?
1: ये प्रशांत, शीतल ने आज एक बार फिर सबको अपने खेल से प्रभावित किया है, लेकिन आज वो अकेले नहीं थी। शीतल ने अनुभवी भारतीय तीरंदाज राकेश कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड मिक्स टीम क्वालिफिकेशन राउंड में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, और यह उपलब्धि जो है वो दोनों खिलाड़ियों की सफल साझेदारी में एक और बड़ी कामयाबी है। इससे पहले भी इन लोगों ने कई रिकॉर्ड बनाए और यादगार प्रदर्शन किए हैं। अगर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों का मिक्स टीम ब्रॉन्ज मेडल भी है। इस जोड़ी ने कुल मिलाकर शानदार 1400 पॉइंट हासिल किए और पेरिस 2024 में बनाए गए अपने पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक पॉइंट से बेहतर किया। शीतल ने लालपति के साथ मिलकर 1368 का स्कोर किया और कंपाउंड महिला डबल्स में शीर्ष वरीयता हासिल की।
0: जी बिल्कुल, शीर्ष वरीयता हासिल की। और बुधवार को जो फाइनल मुकाबला है, सभी भारतीय प्रशंसक उम्मीद करें कि फाइनल जो आयजादा सैडन से होगा वो जीत कर स्वर्ण पदक भारत के नाम करे। अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट का फाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच चेन्नई के एमआई चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। खिताबी मुकाबले के दूसरे दिन ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 200 से अधिक रनों की यादगार पारी खेलकर इतिहास रच दिया।
2: He's just leaned into the drive and smashed it into the gap, and the captain leading from the front, his first 100 in Dulip Trophy coming at the right time and at the right occasion.
0: विशेष किताबी मुकाबले का पहला दिन जो था ईस्ट जोन के नाम रहा था, आज दूसरा दिन कैसा रहा उनका प्रदर्शन?
1: प्रशांत, जब से इस जोन ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है तब से वो साउथ जोन पर हावी ही नजर आए हैं। जैसा कि हमने कल बताया था कि अभिमन्यू ईश्वरन और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत दिलाई थी टीम को, और उसके बाद शिखर मोहन ने उसको बरकरार भी रखा था, लेकिन जब बीच में एक विकेट जो है जल्दी गिर गया, उसके बाद ईशान किशन और कुमार कुशाग्र ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, और अंतिम ओवरों में अनुकूल रॉय और कुरैशी ने मिलकर टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया।
0: जी बिल्कुल, ईशान किशन का भी लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर हम ईशान किशन के सफर की बात करें, घरेलू क्रिकेट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाकेदार वापसी का सफर रहा है ईशान किशन का। हर मुकाबला एक नया कीर्तिमान बयां कर रहा है। आज किन इस पारी के दौरान किन रिकॉर्ड को उन्होंने अपने नाम किया?
1: बिल्कुल प्रशांत, ईशान किशन जब भी अब क्रीज पर उतरते हैं तो एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए उतरते हैं। अगर आज उनके रिकॉर्ड की बात करें तो ईशान किशन जो है वो अरुण लाल और सबा करीम के बाद ईस्ट जोन की तरफ से दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, और ईशान जो है दिलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में शतक लगाने वाले ईस्ट जोन के पहले बल्लेबाज बने। ईशान से पहले जो हाई स्कोर था वो रिद्धिमान साह के नाम था, जिन्होंने 2012 के फाइनल में 170 रन बनाए थे। ईशान ओवरऑल दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में 200 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले सातवें बल्लेबाज बन गए हैं फाइनल में। इसके साथ ही बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज वे दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने दिनेश कार्तिक के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। कार्तिक ने साल 2010 में दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में साउथ जोन की ओर से खेलते हुए 183 रन की दमदार पारी खेली थी।
0: जी बिल्कुल, दमदार पारी खेली। और हम श्रोताओं को बता दें कि ईशान किशन ने इस पारी में 334 गेंद का सामना किया और 270 रन भी बनाए, जिसमें 30 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। और विशेष जी,
1: इसी के साथ ईशान जो है वो दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक लगाने वाले पहले विकेटकीपर कप्तान भी हैं, और वनडे इंटरनेशनल और दिलीप ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले वो पहले बल्लेबाज हैं।
0: पहले बल्लेबाज। और विशेष, हम देखेंगे तो दोनों ही डिजर्विंग टीम जो है वो फाइनल मुकाबला खेल रही है, लेकिन कैसा रहा है उनका इतिहास इस टूर्नामेंट का?
1: इतिहास की बात करें प्रशांत, तो ईस्ट जोन जो है वो 7 बार अब तक फाइनल खेल चुकी है और 2 बार उन्होंने खिताब अपने नाम किया है, और उन्होंने अपना आखिरी फाइनल 2012-13 में खेला था जहां वो विजेता बने थे। लेकिन अगर साउथ जोन की बात करें तो उनका डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट में। उन्होंने 25 फाइनल खेले हैं और 14 बार खिताब जीता है, लेकिन 2025 में फाइनल में उनको सेंट्रल जोन से हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि ईस्ट जोन 13 साल का सूखा खत्म करती है या साउथ जोन अपना दबदबा जो है कायम रखती है।
0: बिल्कुल, देखना होगा कि मुकाबले का तीसरा दिन किस टीम के नाम रहता है। उधर मेरठ मेवरिक्स ने यूपी T20 लीग का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में मेरठ मेवरिक्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लखनऊ फाल्कन्स को 94 रन से हराया। रिंकू सिंह की कप्तानी में मेरठ टीम का प्रदर्शन खिताबी मुकाबले में लाजवाब रहा। मेरठ मेवरिक्स ने दूसरी बार खिताब को अपने नाम किया। इससे पहले साल 2024 में टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। मेरठ मेवरिक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए। 204 रन के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ फाल्कन्स की टीम सिर्फ 109 रन पर ही सिमट गई। और अब चलते हैं

0: टेनिस के कोर्ट की ओर। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेन शेल्टन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सित्सिपास को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। अब बेन शेल्टन का सामना कार्लोस अल्काराज से होगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: आठवीं वरीयता प्राप्त बेन शेल्टन ने चौथे दौर में ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को लगातार सेट में 6-2, 6-3, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। शेल्टन ने पूरे मैच में आक्रामक खेल दिखाया और सित्सिपास को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी और तीनों सेट आसानी से जीत लिए। बेन शेल्टन के लिए यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। टूर्नामेंट के शुरुआती तीन मैच में उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। टेलन ग्रीगस्पुर, ह्यूबर्ट हरकास और डेनिस शापोवालोव के खिलाफ उन्हें जीत के लिए 4-4 सेट खेलने पड़े। हालांकि चौथे दौर में शेल्टन ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया। आर्थर एश स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में 23 वर्षीय अमरीकी खिलाड़ी ने स्टेफानोस सित्सिपास को कोई मौका नहीं दिया और पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा। शेल्टन ने ये मैच सिर्फ 1 घंटा 51 मिनट में ही जीत लिया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्सकैन।
0: विशेष, बेन शेल्टन ने आज तो बेहतरीन खेल दिखाया ही है, लेकिन यूएस ओपन में और कौन सी उपलब्धि उन्होंने अपने नाम की है?
2: बेन शेल्टन ने अपने करियर में छठी बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है और वो उनका यूएस ओपन में दूसरी बार है जब उन्होंने अंतिम आठ में जगह बनाई है। शेल्टन ने 2023 में भी यूएस ओपन में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उस समय वह टूर्नामेंट सिर्फ दूसरी बार खेल रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रहे थे।
0: और अब शेल्टन का जो मुकाबला है वो अभी के मौजूदा जो चैंपियन है कार्लोस अल्काराज से होगा। और अगर अल्काराज की बात की भी की जाए तो लगातार उनका फॉर्म बेहतरीन रहा है। टॉमी पॉल को उन्होंने सीधे सेटों में हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई, तो अब अप्रैल के बाद भी वो अब सीधे ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो क्या कुछ चैलेंजेस होंगे उनके लिए?
2: बिल्कुल प्रशांत, इनके लिए काफ़ी जो है मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि अल्काराज जो है उनके सबसे कठिन प्रतिद्वंदियों में से एक हैं। दोनों के बीच अब तक हुए 3 ATP मुकाबलों में अल्काराज ने ही जीत हासिल करी है और डोमिनेटिंग तरीके से इनको हराया है। दोनों खिलाड़ियों की जो पिछली भिड़ंत हुई थी वो फ्रेंच ओपन में पिछले साल हुई थी, तो इस बार जो कुछ पॉजिटिव्स लेकर जाना चाहेंगे बेन शेल्टन।
0: अब देखना होगा कि दोनों मुकाबले कितना दिलचस्प होता है और अलग अलग वर्ग में भी मुकाबले खेले जा रहे हैं, खिलाड़ियों का कैसा रहा है प्रदर्शन और आज किन खिलाड़ियों पर निगाह होंगे विशेष?
2: अगर महिला सिंगल्स की बात करें प्रशांत, तो एम्मा नवारो ने एना कलिस्काया को 6-4, 6-2 से हराया है और वहीं जेसिका पेगुला ने सोरोना सिरेस्ता को 6-3, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। मीरा एंड्रीवा और इगा स्वाइतेक जो है वो अपने अपने मुकाबलों में क्वार्टर फाइनल के लिए स्पर्धा करती हमको नजर आएंगी। और अगर हम पुरुष सिंगल्स की बात करें तो डेनिल मेदवेदेव राउंड ऑफ 16 में फ्रांसिस टियाफो के खिलाफ हारकर बाहर हो गए। ये उनका जो प्रदर्शन रहा है ये काफी निराशाजनक रहा है और इसमें हमको इससे पहले नोवाक डिजोकोविच की भी हार देखने को मिल चुकी है। यानिक सिनर इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे हैं
0: जी। और आज भी कई प्रतिष्ठित मुकाबले खेले जाएंगे जिस पर सभी टेनिस प्रशंसकों की निगाहें होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में डूरंड कप की विजेता टीम ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि, डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के अध्यक्ष थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, सोसाइटी के उपाध्यक्ष, अधिकारी और ईस्ट बंगाल क्लब के खिलाड़ी उपस्थित रहे। और अब बात फुटबॉल पर। ताशकंद में भारत ने कल ग्रुप बी के अपने आखिरी क्वालिफायर मैच में बांग्लादेश को 3-0 से हराया। इस मैच में जीत के साथ भारतीय टीम ने AFC अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 में जगह बनाने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं।
3: भारत की शानदार जीत में डेनी मेतेई लेशराम, विशाल यादव और मोहम्मद अरबाज ने भारत के लिए गोल किए। इस जीत ने भारतीय टीम की 20 साल बाद AFC अंडर 20 एशियन कप में पहली बार जगह बनाने की दौड़ में बने रहने की उम्मीदें बरकरार रखी है। ग्रुप बी में 3 मैचों के बाद भारत 6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। डेनी ने 25वें मिनट में भारत के लिए पहला गोल किया। इसके बाद विशाल यादव ने 1 घंटे के खेल के दौरान शानदार खेल प्रदर्शन करते भारत के गोल को दोगुना कर दिया। मोहम्मद अरबाज ने 79वें मिनट में एक जबरदस्त शॉट के साथ भारत को 3-0 से आगे कर दिया और टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। अमीशा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोता, आपको बता दें कि प्रतियोगिता में सीरिया के 2 मैचों में 3 अंक है, लेकिन उन्हें ग्रुप में शीर्ष पर चल रही उज्बेकिस्तान की टीम से खेलना है। अगर सीरिया अपना मैच हार जाता है या ड्रॉ खेलता है तो भारत दूसरे स्थान पर रहेगा और 8 ग्रुप में से 7 सर्वश्रेष्ठ रनर अप टीमों में

0: शामिल हो जाएगा। इंडोनेशिया के बाली में भारत के करण सिंह ने ITF मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर M15 में पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। ये उनके कैरियर का चौथा खिताब है, जो 2026 सीजन का तीसरा और सिंगल्स में दूसरा खिताब भी है। प्रतियोगिता में चौथी वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने हार्ड कोर्ट पर खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड के पांचवी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इसाक ब्रेकफर्ट को 7-5, 7-6 से हराकर खिताब अपने नाम किया। और उधर वुमेन्स एशिया कप भी खेला जा रहा है, क्या कुछ हाल है अंक तालिका में विशेष?
1: अगर अंक तालिका की बात करें प्रशांत, तो ग्रुप ए में भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है और ग्रुप बी का भी जो सेमीफाइनल का स्थान है वो क्लियर हो गया है। श्रीलंका पहली टीम बनी है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली ग्रुप बी से।
0: और श्रोताओ, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
3: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
4: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
2: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।

0: दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला है वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
2: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही।
6: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
1: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने के 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं।

0: मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थी या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
5: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
6: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और MCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
5: देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ बजट।
0: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों की परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के

25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: to inaugurate Global FinTech Fest in Mumbai. Home Minister Amit Shah says zonal councils have become instrumental for development and public welfare. Also presents President's Police Colour to Goa Police. LPG refill booking interval of 25 days to be same for urban and rural areas. 5 MCT officials suspended in Satyaniketan building collapse incident. Delhi High Court orders high-level MCT inquiry. Election Commission announces by-poll to Nagaon Lok Sabha seat in Assam on 6th of October. Assembly by-polls for 2 seats each in Tamil Nadu and West Bengal and 1 in Puducherry to also take place simultaneously. And at World Archery Para Series, Sheetal Devi enters women's compound individual final in Ahmedabad, assuring a medal for India. That's all in news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों से। श्रोताओं, भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना कल दोपहर 2:30 पर। दैनिक मुख्य सूचना मुनपा में शाम 5:30 पर। शाम 7:11 पर साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से। साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग कल शाम 7:25 पर तथा रात्रि 8 आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, तो ये रहे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी सेवा